मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्स, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, FM 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी, कभी भी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन,

वन सैल्यूट। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए, इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए, हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति

यहाँ देश का नाम रोशन किया। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्रॉप की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने

कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने से चाय

परिवार के साथ कुछ पल बिताने से चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल हैं। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच

तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूँ, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सी के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हैं। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सी भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम
वोकल फॉर

लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है, जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता

0: के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: आकाशवाणी दिल्ली का मन की बात प्रोग्राम मीडियम वेव दोनों FM के जो आकाशवाणी करगिलिन कसता मन की बात प्रोग्राम पूर्गी तर्जुमा प्रचुगत
4: निरंचन नमस्कार दजत इतुरी गांव योत गाने शांसकुल तंग मिफिया यंग कैलेंडर लस्ते रुकुस्पमिशात दिरिंग जुलाई छेसिंग शुरसा जुरुगां ध्यान चोसियाचिकिन दिरिंग कारगिल विजय देवसिंह यंग मेंतासना दिजाकपुस नतंग नरचन छाचुगत दिजाकपुस नतिर मकमीनी खुद पे इतुफिंगत कारगिली थुनमोर रिगोन जिक्समोचन तुस्न नमजान दुश्मन यंबो थमोबे चतकपो नतिर मकमीनिस गचोस दुम्बा गंग इन्नां खोंगी क्यूत न हम बान सक गज चैलेंज शिक इन्ना थ्याक पिफिया चतक सुन खोंग इस रंग रुको न स्ट्रोक पो भारत फयूली स्ट्रोंग लुक से फिया स्प्राले तंस दिरिंग करगिल विजय देवसे तुस्पे का नस फयूले फिया स्ट्रोक स्कोर खन शहीद श्मक्मी गंग मा छस लुक स्प्रचुगत अचुनोन दिरिंग भारत पुस रंग क्योंतों उनला इतो बचा सम्मेन मा खोंग रमांग उन सक सुमार क्यूतुन सप्पा लेपचुक भी खाकुरियो तो दियाना संबे नांग जोंस दिलवा फेस्पा शूरिये विजय यात्रे गुजुक्षिक बसीन मोटर साइकिले का जोने बेदी बेस्पे गुजुक्सपु जुलाई छेस चुजबी जगा रिकेलसा दहली नेशनल वार मेमोरियल लिकना गुजुक्सों सीन यान दि सोपाव द्रासला करगिल वार मेमोरियल लिकलेपचासीन दि फ्रिन पुइन वन राइट वन नेशन वन सल्यूट दि बेस्पुस द्याव इतु फिंचासिन फायुलिफिया तंगस्पिर मकमीनि कुर्बानियु रचेचस कोरंग मन मिन अचुनून दिरिंग फायुल भारतेस रंगिर मकमीन सा मिन मा तकनेकी क्युतुन लंग जदर तांगनितु जाकमा कचिक दुनला INS महेंदर गिरी भारती बहरीये फ्रांगलुक स्ट्रेसिंग दि थमे नयो भारत कुरियन लोग नक्शा तंग से

0: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defense production, defense exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today."
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: The Prime Minister said that a special Shaurya Vijay Yatra has been organized this year, which began on the 14th of July from the National War Memorial in Delhi. This motorcycle rally will reach the Kargil War Memorial in Dras. Its message is one ride, one nation, one salute. Mr. Modi said that this journey reminds everyone that the sacrifice made for the nation can never be forgotten. Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
1: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS Mahendragiri शामिल किया गया. यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है. इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है. यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है. इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया. इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है. दो तीन दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है.
0: Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: Catch the Rain ka sandesh bahut seedha hai. Jab barish gire, pani ko wahin sahejiye. Isliye 4 July se desh bhar mein ek vishesh abhiyan bhi chalaya ja raha hai. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी हमारी प्यारी प्यारी सी बहनों को
1: राम राम। और प्यारी प्यारी के साथ एक बात आज कहना भूल गई हूँ मनीषा, सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, लंबी पतली गोरी,
0: इतना एहसास दिलाती है उन्हें,
1: मन की बहुत ही निर्मल, अपने घर को बनाने वाली, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देने वाली, बुजुर्गों की सेवा करने वाली।
0: वाह वाह वाह, क्या महिमा मंडन किया है आपने। बिल्कुल, लेकिन ये इसमें सार्थकता है कमलेश, क्योंकि महिला ना हो, हमारी नारी ना हो, तो एक परिवार की जो रीढ़ है ना वो टूट कर बिखर जाएगी।
1: तभी तो हम आते ही पहले अपनी बहनों को जब राम राम करते हैं, उसके साथ ही साथ उन्हें बताते हैं कि आपके अंदर जो इतनी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो आपके अंदर इतने अच्छे भाव छुपे हुए हैं, उनकी जब हम तारीफ कर देते हैं तो फिर आपको भी थोड़ा सा लगता है, चलो घर परिवार वाले लोग नहीं कह पाते, वो इन बातों को नहीं कहते हैं, तो कोई तो है हमारी सखियाँ जो कह देती हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, सखियाँ हम तो हैं ही कहने के लिए, और साथ में यदि हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हमारे लिए थोड़ी सी तारीफ कर देना, तो वो तारीफ के शब्द हमारे लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं, और हमें और हिम्मत आ जाती है कि यार जी आज तो हमारी तारीफ हो गई, हम और कुछ भी करके दिखाएंगे, भाई चार पकौड़े और तल दो,
1: और अगर सब्जी एक बनाई है तो चलो आज दो सब्जी बना दो। तो जब घर में ऐसी बातें होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जब घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, हमारी बगिया बहुत अच्छी महकने लगती है, क्योंकि हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं, हम अपनी जब बातें करते हैं वो अच्छी होती है, और जब पूरा परिवार बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें करता है, कई बार एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं, लेकिन वो हंसी हंसी में खिंचाई जो है ना वो अच्छी भी लगती है।
0: जी हाँ, अच्छी भी लगती है, और चेहरे के भाव जो है वो छुप नहीं पाते, तो इसीलिए कहते हैं ना

0: कमलेश, आज है 26 जुलाई और आज हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। ये दिन बड़ा ही खास है क्योंकि कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की हमेशा याद दिलाता रहेगा।
1: बिल्कुल, और ये जो दिन है ये भी बता दें कि 27वां कारगिल दिवस हम मना रहे हैं
0: जी।
1: और कारगिल विजय दिवस जो है 1999 में इसी दिन भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन विजय के तहत पाकिस्तान के खिलाफ 3 महीने तक चले युद्ध में जीत हासिल की थी उसके उपलक्ष्य में जो है वो मनाया जाता है। और मैं कहती हूँ कि जो प्राणों की आहुति देने वाले हमारे वीर सैनिक थे उनके सर्वोच्च बलिदान को आज हम याद कर रहे हैं, उनको हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
0: जी हाँ, और ये दिवस युवाओं देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। जगह जगह पर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं और शहीदों को दिल से शत शत बार नमन किया जाता है।
1: और इसमें कैप्टन बत्रा, मनोज कुमार पांडे और अनुज अय्यर जैसे वीरों से हम ये सीख सकते हैं कि देशभक्ति ही हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि जब मौसम बिल्कुल ही अनुकूल हो तब तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो उस पर आप विजय प्राप्त करके और अपना तिरंगा फहराते हैं तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। देश की रक्षा हमारा मान है, भारत हमारी जान है।

0: और बड़ा खास दिवस है जो है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन भी हर साल 26 जुलाई को बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है और यूनेस्को ने 2015 में ये दिवस मनाने की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था मैंग्रोव वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना।
1: बिल्कुल, और अगर जब हम बात करते हैं अपने देश की, तो भारत में मैंग्रोव जो है वो वन प्रबंधन के लिए जाना जाता है, और वो जो वन है हमारे यहाँ पर वो है सुंदरबन और गंगा डेल्टा का हिस्सा है, और इसमें खारे पानी के मगरमच्छ भी रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनकी प्रजातियां होती है, उनका घर भी होता है। तो अगर ये वन होंगे तो वो जो प्रजातियां हैं वो भी सुरक्षित रहेंगी ना मनीषा?
0: जी हाँ, और तटों की सुरक्षा भी की जा सकेगी, और साथ ही साथ जो हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद है कार्बन, उसको सोखने का एक महत्वपूर्ण कार्य हमारा मैंग्रोव वन करता है।
1: और मैंग्रोव वन जो है वो जैसे अभी पहले मैंने बताया था कि एक तो होता है कि सम विषम परिस्थितियों में चीजें उग जाना, एक होता है कि बिल्कुल ही ऐसी परिस्थितियां जहाँ पर की मौसम जो है उनका साथ ना देता, और उसके बाद भी ये वन जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ, यानी कि पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा तो जीव जंतु और पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित भी रहेगा,
1: और इसका तो हमें विशेष रूप से ख्याल रखना ही है।
0: बिल्कुल।

0: कमलेश, गीत संगीत हम अपनी बहनों को सुनवाते रहेंगे, लेकिन अभी करते हैं कुछ ज्ञान की बातें, कुछ काम की बातें।
1: अच्छा।
0: और इसी के तहत हम सुनवाएंगे महिलाओं को बातचीत, और बातचीत का विषय रहेगा गर्भवती महिलाओं को दें पोषण और संतुलित आहार। बातचीत में भाग ले रही हैं अदिति का अग्रवाल और इनसे बातचीत कर रही हैं यमुना गर्ग।
2: और स्वस्थ मन हर किसी का होना जरूरी होता है, लेकिन जब बात हमारी गर्भवती बहनों की आती है तो फिर उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहा शिशु का आहार माँ के द्वारा लिए गए आहार से जुड़ा होता है। तो ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि गर्भवती बहनों का आहार कैसा होना चाहिए, उनका वजन, उनकी देखभाल किस तरीके से होनी चाहिए कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो आज इन्हीं ढेर सारे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अदिति का अग्रवाल को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आहार पोषण विशेषज्ञ के तौर कार्यरत है। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रश्न तो बहुत से आते हैं गर्भवती बहनों को लेकर के, लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि गर्भ धारण करने का सही समय कब से कब तक का है?
3: जैसे बात करते हैं गर्भ धारण की, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि उम्र हमारी जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है इस चीज में। और उम्र अगर आदर्श, जैसे आइडियल एज बोली जाए, तो 25 से करीबन 30 के करीब या ज्यादा से ज्यादा 35 में हमें देखना चाहिए।
2: अगर ये जैसे होता है ना कि करियर की तलाश में हमारी बहनें जो है आगे बढ़ती हैं, शहर में जो देखने को मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन गाँव में भी होता है ना, एक चीज ये देखने को मिलता है कि बहनें 50 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो रही है। वजह क्या है कि बेटी बेटी हो रही है, तो बेटे की चाहत में 7 बेटी के बाद 8 बेटी बाद, ऐसे में खतरा नहीं है उनके साथ?
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत ही गलत है। बढ़ती हुई उम्र में भी प्रेगनेंसी को नहीं देखना है। प्रेगनेंसी अर्ली हो, पहले हो, जैसे सही उम्र में हो, तो वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही सुरक्षित होती है। आपने जैसे कैरियर की बात की, वो बहुत ही जरूरी है कि हम एक बैलेंस बनाएं अपने कैरियर और गर्भ धारण के समय में,
2: क्योंकि अब तो गांव में शिक्षा फैल चुकी है, सारी शिक्षित हो रही है हमारी बहनें, तो बालिकाएं अब चाहती हैं हम भी शहर की तरह थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन जहां तक गर्भ धारण करने की बात आती है, तो जो एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए इतने से इतने उम्र तक का, तो उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
3: बहुत जरूरी, क्योंकि इसका ये निष्कर्ष निकलेगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो माँ और बच्चा दोनों की सेहत पे ये प्रभाव पड़ेगा। अगर वो कमजोर है, अगर वो कुपोषित है, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और बच्चे का भी उसके साथ साथ बिगड़ता जाएगा।
2: गर्भ धारण करने से पहले बहनों का स्वस्थ होना चाहिए ना, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे में खाने में उन्हें क्या लेना चाहिए?
3: आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है। आजकल हम अपने जब भोजन की बात करते हैं, तो भोजन हमारा बहुत ही कुपोषित हो रहा है। हम कुपोषण का मतलब एक चीज और बताना चाहूंगी, ये नहीं है कि हम कमजोर हैं तभी हम कुपोषित हैं, हम मोटे होने पे भी, हम फूले हुए होने पे भी हम कुपोषित होते। तो कुपोषण के ये दो पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, और इसको देखते हुए हमें एक संतुलित आहार की, हम जब भी बात करते हैं पोषण में तो हम संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार बेसिकली हम उसको 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमारे सीरियल्स आते हैं जो कि हमारा अनाज है, प्रोटीन्स आते हैं जो कि हमारी दालें हैं, दूध और दूधयुक्त पदार्थों से जो भी मिलता है प्रोटीन वो हम उसमें रखते हैं। फिर हमारे सब्जियां और फल आते हैं जो कि हमारे विटामिन और खनिज लवण जो कि मिनरल्स हैं वो हमें प्रदान करते हैं। एक और बहुत अहम चीज है, वो है वसा या फैट हमारे आहार में जरूर होना चाहिए, और उसके साथ साथ पानी बहुत जरूरी है।
2: गर्भ धारण के बाद जैसे 1-2 महीना बीता, तो कभी कभी बहनों को पता ही नहीं चलता कि गर्भ धारण हो गया, तो ऐसे में बहनों को चेकअप कराने या टीकाकरण कराने का क्या करना चाहिए?
3: बहुत जरूरी है कि हम नियमित तौर पे अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लेते रहें। प्रेगनेंसी का 3 ट्राइमेस्टर्स है, एक ट्राइमेस्टर 3-3

0: महीने के होते हैं
1: okay.
0: तो हमें हर ट्राइमेस्टर पे अपने डॉक्टर से मिलते रहना है, उनकी उनसे जानकारी लेते रहना है. जो भी टीकाकरण है जैसे कि थायराइड हो गया या शुगर हो गई, आयरन हो गया, क्योंकि अनीमिया okay. जो है बहुत ही बड़ी एक समस्या है.
1: हाँ.
0: उसके साथ साथ कैल्शियम, थायराइड, ये सारे चेकअप भी होते हैं.
1: बात एक और आती है सुनने में, जैसे 2-3 महीने बीता तो होता क्या, खुद ब खुद जो है गर्भपात हो जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है?
0: गर्भपात के पीछे देखिए, एक तो कुपोषण बहुत बड़ा कारण होता है. हम शारीरिक रूप से इतने समर्थ नहीं है कि हम बच्चे को मतलब डिलीवर कर सकें. कम आयरन होना शरीर में, तो वो भी प्रीमेचर भी करता है, मरा हुआ बच्चा पैदा करता है.
1: अभी जैसे बात आती है स्वस्थ मनोदशा की, तो आहार विहार आचार यानी घूमने फिरने के साथ साथ स्वस्थ मन या मन की मनोदशा बेहतर बनी रहे, तो इसके लिए हमारी बहनों को क्या करना चाहिए?
0: बहुत जरूरी प्रश्न आपने पूछा. आजकल हम जहाँ वैसे देखते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रेगनेंसी एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है. एक सामाजिक है जिम्मेदारी, और सबको ही आगे बढ़कर एक प्रेग्नेंट महिला की मदद करनी है. आहार भी तभी असर करता है जब हमारा माहौल खुशनुमा हो. हम देखें तो ये सारे से कारक हैं.
1: प्रेगनेंसी होती है तो ये भी कहा जाता है पता नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी.
0: हाँ, प्रेगनेंसी में भी बहुत ध्यान देनी कि हमें कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है. थोड़ा सा घूमना फिरना हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, योगा आजकल हम देख रहे हैं, हमारा तो देश ही योगा का है. प्रेगनेंसी में भी योगा का बहुत अच्छा रोल है, तो हम उसको छोड़ना नहीं है. प्राणायाम हो गया, टहलना हो गया, बहुत अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है ये सब, क्योंकि इससे हमारा तनाव है, हमारे अच्छे हॉर्मोन्स जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स कहते हैं जब हम साइंटिफिकली बोलते हैं, तो ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं अगर हम योगा करते हैं. तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन क्रिएट करती हैं, तो बहुत ही वो जरूरी है.
1: एक बात और है ना कि अगर हम योगा करते हैं तो जो हमारा बच्चा जो पल रहा है हमारे गर्भ में, उस पर भी तो उसका असर पड़ता है. हमारी सारी मनोदशा का अभिमन्यु वाली बात आपको याद होगी.
0: हाँ जी, बिल्कुल सही आपने इसको लिया है. बिल्कुल ऐसा ही होता है. बच्चा भी हम देखेंगे, अगर हम एक्टिव रहे हैं, हम अगर कार्यरत रहे हैं अच्छे से पूरी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो हमारा आने वाला बच्चा होगा वो भी एक्टिव होगा. आजकल मोटापे की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो ये जैसे शुगर की जांच की इसीलिए बात जरूरी थी कि अगर माँ को डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नवजात शिशु में भी हो सकते हैं. तो ये सब रोजमर्रा की बताएंगे, जो भी प्रेग्नेंट है महिला है उसको अगर हम बताएंगे वो ध्यान रखें ये सब चीजें, तो वो चीज उनके नवजात शिशु में भी आएगी और उनकी कम टेंडेंसी होगी कि वो आगे भविष्य में इन बीमारियों से ग्रसित.
1: आपने जो ये बात कही ना कि अगर स्वस्थ मन हो वाकई में और मनोदशा अच्छी हो, परिवार का सहयोग हो, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो होगा
0: कुल मिलाकर
1: स्वस्थ, समझदार, बुद्धिमान होगा. और बच्चों के पोषण के लिए जब कोई बात आती है तो क्या बच्चों के पोषण के लिए भी कोई सप्लीमेंट है?
0: हाँ बिल्कुल, जो भी माताएं ले रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड की जैसे हमने बात की, फॉलिक एसिड बिफोर डिलीवरी डॉक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है. ये मानसिक विकार होते हैं, इससे बचाता है. तो फॉलिक एसिड, फोलेट, ये खाने में भी हमारे जैसे बीन्स हो गई, संतरा हो गया, इन सब में होता है. पर जो प्रेग्नेंट महिला है उसको इसके अतिरिक्त की जरूरत है. इसी सप्लीमेंट्स आजकल डॉक्टर्स बताते हैं, आयरन के और फॉलिक एसिड के, जो कि आपके प्रेग्नेंट महिला के साथ साथ के बच्चे के विकास के लिए भी बहुत जरूरी.
1: जी अभी तो बहुत सारी दवाइयां चलने लगी, बहुत सारी मेडिकल जांच होने लगे, लेकिन ये शुरू से ये प्रक्रिया है कि कभी जब गर्भवती होती है महिला 2-3 महीने बाद उसको उल्टी सी आने लगती है, लेकिन इसके भी बहुत सारी दवाइयां लेने लगती हैं, उन दवाइयों का असर जो है गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, तो ऐसे में क्या उसे सामान्य प्रक्रिया मान के शांत हो जाना चाहिए या दवा लेना चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है क्या?
0: नहीं देखिए, घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए. ये एक कॉमन समस्या है, आम समस्या है, और इसको हम निजात पा सकते हैं.
1: जी
0: अक्सर ये होता है कि प्रेगनेंसी में लोग सोचते हैं, अरे महिला खुद भी सोचती है कि हम प्रेग्नेंट है तो बहुत ज्यादा उठते ही खाने शुरू कर देती है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है. हमें नियमित लेना है, जो भी लेना है, पर हम कम मात्रा में लेना है, और उससे क्या होगा, उपकाई नहीं आएगी. तो कोई खट्टे फल या कुछ हम ले सकते हैं,
1: नींबू
0: पानी के रूप में, या संतरा जो कि बहुत अच्छा माध्यम है, को लेके हम आगे अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं, ना कि हम बहुत भारी खाने के बजाय. तो उससे क्या होगा, ये मॉर्निंग सिकनेस जो होती है ये उनमें कम होगी और वो काबू पा सकती है समस्या से. और फिर भी अगर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो, असहनीय हो, तब हम डॉक्टर की बिल्कुल सलाह लें.
1: संतुलित आहार की बात आती है तो गर्भवती बहन की थाली में क्या क्या शामिल होना चाहिए?
0: जैसे मैंने आपको आहार के कुछ ग्रुप्स की बात की, तो वो सारे हम शामिल करने हैं उसमें. हमारे अनाज, जैसे आजकल एक चीज और हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की हमने जब बात की, तो उनका जो भोजन है वो हमसे शहरी लोगों

0: कि काफी अच्छा है, तो उन्हें बहुत ज्यादा भागने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे खड़े अनाज होते हैं, कृषि अन्न हम जिन्हें कहते हैं आजकल,
1: जी
0: उनको बढ़ावा देना, क्योंकि उनमें क्या है कि आयरन, कैल्शियम ये सब तो है ही, फाइबर भी है, तो ये हमारे होल सीरियल्स यानी पूरी तरह से पूर्ण है हमारे ये अनाज, तो
1: जी
0: इन्हें इंक्लूड करना है हमें। इसके साथ साथ फल सब्जियां हो गई, जो भी हरी फल सब्जियां हैं, क्योंकि ये हमें आयरन और कैल्शियम में मदद करती हैं। दालें हो गई हमारी,
1: जी
0: जो भी है, जो मांसाहारी व्यक्ति है वो चिकन, फिश, अंडे ये सब ले सकते हैं, मछली, अंडे ये सब ले सकते हैं। बल्कि जो शाकाहारी है वो भी निराश ना हो, वो भी अपना बहुत अच्छे से दूध
1: शाकाहारी
0: की
1: में भी बहुत सी चीजें उपलब्ध
0: बहुत
1: हैं।
0: चीजें हैं, बहुत सारे
1: जी
0: दुग्ध उत्पाद हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें भी हमें प्रोटीन दिलाने में बहुत सहायक हैं। तो 55 ग्राम के जितना प्रोटीन प्रेगनेंसी में जरूरी है, उसके साथ साथ 10 ग्राम एक्स्ट्रा जो हमारे हर ट्राइमेस्टर पे हम देखते हैं, तो वो
1: जी
0: सारी जरूरी है। तो ये सारी हम अगर लेते हैं इस तरह से, जो भी मूंगफली ले ली हमने, नट्स की जब इससे बात करी, फैट्स में हमारे तेल हो गए, तिल का तेल हो गया या सरसों का तेल, घी, घी को
1: जी
0: भी पीछे नहीं रखेंगे क्योंकि
1: जी
0: घी भी जरूरी है।
1: बहुत जरूरी।
0: हाँ, इसके साथ साथ पानी, जैसे पानी का भी रोल बहुत अहम है, तो ये भी एक संतुलित थाली में इसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं।
1: जी एक बात और है कि बहनों का बड़ा मन करता है कुछ खट्टा मीठा मिर्च सा खाने का, तो ये जो चटपटे जो इसकी बात आती है ना, स्वाद आता है मन में, जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है तो बहुत तीखा खा ली, बहुत खट्टा खा ली, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ऐसा लेना चाहिए उनको?
0: बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। ये खट्टा बहुत ज्यादा तो इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि विटामिन सी है, वो तो ज्यादा भी हो हमारे शरीर से तो वो निष्कासित हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा तीखा खाने से क्या होता है, गैस इस सब की शिकायत होगी, तो फिर उससे क्या होगा कि माताएं खुद भी परेशान होंगी, महिलाएं खुद भी परेशान होंगी, तो इसलिए ज्यादा तीखा खाने से बचें, ज्यादा ऑयली जो कि फ्राइड, डीप फ्राइड हो गया, ये सारी चीजें खाने से बचें, लाइट और खाएं, तो वो ना तो एसिडिटी करेगा ना गैस की हमें समस्या होगी।
1: जी एक प्रश्न हमारे दिमाग में गूंज रहा है कि समय से पहले शिशु का जो जन्म होता है, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? जैसे सतुआ सा बच्चा हो गया कहते हैं, तो बड़ा प्रीमेच्योर, जिसे बहुत ध्यान रखना पड़ता था, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है?
0: देखिए, वही घूम फिर के सारी बात आहार पर आ जाती है। आयरन की कमी जो होती है,
1: जी
0: कई बार सही तरह से जांच नहीं होती है, या कई बार महिलाएं खुद भी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होती हैं आयरन की तरफ, तो
1: जी
0: उसकी कमी की वजह से ऐसे बच्चों का जन्म होता है। तो हमें हर अवस्था में प्रेगनेंसी की ध्यान देना है कि हमें आयरन और कैल्शियम जैसे जो तत्व हैं उनके ध्यान देना है।
1: गर्म चीजें जो है, जैसे जब
0: हाँ,
1: गर्भ धारण करती है तो गर्म
0: और
1: चीजें
0: कुछ
1: भी नहीं
0: ऐसे,
1: लेनी चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, ये प्रतिबंधित कुछ भोजन उनको नहीं हमें लेना चाहिए, जैसे कि पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये सारे ऐसे फल होते हैं जो उनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि मिसकैरेज या जल्दी डिलीवरी करने में वो
1: समय से पहले,
0: समय से पहले हो, और इनके दुष्प्रभाव पड़ते हैं बच्चों पर, तो हमें ऐसे भोजन पदार्थों से थोड़ा सा बच के।
1: बच्चे के जन्म लेने के बाद कभी कभी माँ को ना दूध ही नहीं आता है, कुछ माँ को तो बहुत ज्यादा आता है तो कुछ माँ को बिल्कुल नहीं आता है, तो ऐसे में विकल्प के तौर पे क्या किया जाए जिससे बच्चा पूर्ण स्वस्थ रहे, माँ का दूध के रूप में कुछ पा सके?
0: हमें ये ध्यान देना है कि गर्भवती महिलाएं जो है तनाव से दूर रहें, और उनके साथ साथ एक उनको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे वो अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करा सकें, उनकी जो मनोदशा है वो एकदम स्तनपान कराते वक्त एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, वो कुछ सोच नहीं रही हो, कोई चिंता नहीं करनी है उन्हें।
1: जिस माँ को आता ही नहीं है दूध, उसके पीछे क्या रीजन है?
0: कई बार महिलाएं यही सोचती रहती हैं, हम नहीं करा पाएंगे, हम नहीं करा पाएंगे, जबकि ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है,
1: नेचुरल है।
0: हाँ जी, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं शिशु के, जब बच्चा स्तनपान करता है तो महिलाओं में खुद से ही ये स्टिमुलस होता है हमारे मस्तिष्क में कि हमें बच्चे को स्तनपान कराना है, तो वो अपने आप ही रिलीज होता है, तो हमें बहुत ज्यादा उस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं। और ऐसे कुछ इसके साथ साथ कुछ गैलेक्टोगॉग्स हम बोलते हैं जो दूध को निकालने में हमारे भोजन है, ऐसे कुछ जैसे कि अजवाइन हो गई, जैसे जीरा हो गया, ये सारे मसाले हमारे आमतौर पे
1: उनके लड्डू हो गए, और सतावर, खास करके सतावर दूध बढ़ाने में सहायक होता है, तो पीपर हुआ, सतावर हुआ, ये सारी चीजों में मसाले को पीस करके दूध में खौला के दिया जाता था, उससे भी दूध आने लगता था। गर्भवती बहनों और उनके स्वास्थ्य के बारे में और क्या कहना चाहेंगे?
0: हमारा जो आहार है वो कंसेप्शन के पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले से हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम जो नींव डाल रहे हैं आगे वही हमारा रिजल्ट होगा, वही हमारा निष्कर्ष होगा, इसलिए जरूरी है कि हम प्रेगनेंसी के पहले ही जो महिलाएं विचार कर रही हैं वो अपने आहार में संतुलन रखें। आजकल बहुत ज्यादा शुगर, जो कि मिठाई वगैरह या फिर बाहरी चीजों का बहुत ज्यादा पैकेट फूड जिसको कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स का पड़ गया है, तो हम इन सब चीजों से दूर रह के जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं उसको लें,
1: समय से लें
0: और अपने अवस्था पे लें। जो भी हमारी, अगर हम प्रेग्नेंट नहीं है तो हम इस तरह से अपने शरीर को बनाएं कि हम आगे प्रेगनेंसी के जब दौर में जाएं तो हम अच्छे से उसको, जांच भी जरूरी है, डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है।
1: इस समय हमारे साथ डॉक्टर अदितिका अग्रवाल जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आहार पोषण विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और उन्हें कैसे पोषण युक्त आहार लेना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारी बहनें सुन रही थी ये बातचीत गर्भवती महिलाओं को दे पोषण व संतुलित आहार, डॉक्टर अदितिका अग्रवाल से बात कर रही थी यमुना गर्ग।
3: गोरी जरा हंसते तू, हंसते तू, हंसते जरा, ओ छोरी जरा हंसते।

0: आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ढेरों बातें की हमारी श्रोताओं से। उसमें सबसे पहली जो बात निकल के आई, कमलेश की कारगिल विजय दिवस पर उन्होंने शहीदों को नमन किया और सैनिकों को तकनीकी रूप से सक्षम और सशक्त बनाने पर जोर दिया।
1: और आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी उन्होंने बात करी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं जल संरक्षण की, तो जल संरक्षण पर भी जोर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा, बचाई गई हर बूंद भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: जी हाँ, देश की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया, ये भी बताया उन्होंने। और विक्रम 1 की सफल लॉन्च को ऐतिहासिक पल बताया, जो पूरे भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है।
1: और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने की भी अपने देशवासियों से उन्होंने अपील की है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमसे मन की बात करते हैं और उनकी एक एक बात जब होती है और फिर हम उसको बड़े गौर से पहले सुनते हैं और उसके बाद अपने ऊपर अमल भी करते हैं।
0: जी हाँ, और जब देश की बात आती है कमलेश, तो हमारे जो देशभक्त हैं वो भी हमें बड़े याद आते हैं। और ऐसी हमारी महिला वीर समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही एनी बेसेंट, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी और 1893 में पहली बार वो भारत आई।
1: और 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की। वो प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजवादी भी थी। और कहा जाए तो हमारे अधिकार क्या हैं और हमें कैसे

0: अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, तो अधिकार कार्यकर्ता भी थी और उसके साथ साथ शिक्षाविद भी थी। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए और बताने के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का संपादन भी किया और उनका प्रकाशन भी किया।
1: जी हाँ, और 1848 में सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना।
0: यानी उनका पूरा जो एक काम था वो ये था कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा को जब तक हम अपने साथ अपनाएंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते।
1: जी हाँ, और हमें सबको आगे बढ़ाना है, तभी हम देश से असली प्रेम प्रदर्शित कर पाएंगे। नफरत

0: कमलेश, देश से असली प्रेम जताना है तो बेटियों को बचाना है और साथ ही साथ पढ़ाना है और खिलाना भी है। अब तो बहुत कुछ बदल चुका है।
1: बिल्कुल, लेकिन तब भी हमारा प्रयास यही रहता है कि वे जहाँ नहीं बदला है वहाँ बदलाव की बयार आ जाए, क्योंकि देख तो रहे हैं कि बदलाव के बयार आ चुकी है, पर ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्से जो है अभी उस बदलाव को अपने कहते हैं अपनाने के लिए थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, क्योंकि बेटी नहीं है भार, ये है जीवन का आधार। और आज हम बात कर रहे हैं एक योजना जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से शुरू की थी।
0: जी हाँ, आइए कन्या के जन्म को उत्सव मनाएं, बड़ी ही प्यारी पंक्ति है। और इस योजना का उद्देश्य रहा है बाल लिंग सुधार करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना। साथ ही ये योजना महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
1: और हम तो यही चाहते हैं कि अगर जब बेटा पैदा होता है तो हमारे यहाँ पर कई जगह पर कुआं पूजन का रिवाज है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि जब बेटियां पैदा हो तो उस पर भी कुआं पूजन का जो विधान है वो किया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। यानी हमें उत्सव मनाना, हमें खुशियां मनानी है कि आज हमारे घर हमारी प्यारी प्यारी बेटियां आई है।

0: तो हमारी बहनों को हम अपना ईमेल बता देते हैं ताकि वो हमें अपना फीडबैक जो भी दे पाएं, कुछ अच्छाई हो कुछ बुराई हो सब समेटेंगे हम अपने आंचल में।
1: बिल्कुल, तो और समेटने के बाद

0: अभी हमारी महिलाएं सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर सुनील से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
2: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकतक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकतक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकतक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकतक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
2: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
2: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला

0: सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today.
2: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy.
2: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS Mahendragiri शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। दो तीन दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
1: The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram-1 last Sunday. He elaborated that it is India's first rocket developed by the private sector. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the

स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज में सुन रहे इस गाने को आप जब सुन रहे हैं तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, आज एक ही फिल्म से हम बात करेंगे, फिल्म मेरे महबूब की। और आज मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

दोस्तों मेरे महबूब, ये 1963 में आई थी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इस फिल्म में अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, साधना, निम्मी, प्राण, जॉनी वॉकर और अनीता ने अभिनय किया था और यह उस साल की सुपर डुपर हिट हिंदी फिल्म थी। और इस फिल्म की कहानी क्या थी और इस फिल्म से जुड़े कौन सी ऐसी बातें थी, ऐसे रोचक किस्से थे जो आज आपको जरूर सुनने चाहिए, और ये

फिल्म में बताऊंगा। बस शर्त है सिर्फ इतनी कि आपको हमारे साथ बने रहना है और इस कार्यक्रम को सुनते रहना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक और प्यारा सा नगमा इस फिल्म से सुनाते हैं, उसके बाद बात होगी इस फिल्म की कहानी की।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप ये जो गाना सुन रहे हैं ये मेरे महबूब फिल्म से है और संगीत दिया है नौशाद साहब ने।

अनवर, इस अनवर नाम का जो किरदार निभाया है वो राजेंद्र कुमार ने निभाया है, और जो एक बुर्का पहनी हुई लड़की यानी मुस्लिम समुदाय से जो लड़की है उसका किरदार निभाया है साधना ने। और इस पूरी फिल्म में, इसकी कहानी में उनके प्यार, परिवार और सामाजिक उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द पूरी कहानी इस फिल्म की है। कहानी बेहद अच्छी है क्योंकि उस दौर में हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए हम सभी के बीच में जो प्यार होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति केयरिंग होनी चाहिए, उसी का एक बहुत ही सकारात्मक संदेश इस फिल्म के जरिए दिया गया है। और आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन उस दौर में साधना कट हेयर स्टाइल, जी हाँ, जो इस फिल्म की हीरोइन है साधना, उनके जो हेयर स्टाइल है, दरअसल उनके बाल पहले पूरे उनके माथे पर आते थे, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर H.S. रॉयल साहब चाहते थे कि उनका माथा साफ दिखे, और इस वजह से उन्होंने उनके बालों को थोड़ा सा हेयर स्टाइल में चेंज लाए, और बाद में वो हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ कि साधना कट नाम से ही सारी लड़कियां हमारे देश की साधना कट हेयर स्टाइल को पसंद करने लगी। और जरा सोचिए, अगर वो दौर आज का दौर होता, सोशल मीडिया का दौर होता, तो वो रील, वो साधना कट का अंदाज कितना वायरल होता। तो है ना ये एक दिलचस्प बात। तो दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये है लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म थी, और इसका जो ताना बाना था वो एक मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ ड्रामा है। और इस फिल्म में

इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। शुभलता प्रेम सागर का मैसेज आया है अमृतसर से और इन्होंने लिखा है कि आज आपके इस कार्यक्रम को सुनकर हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, भूली बिसरी यादें ताज़ा हो गई। ये बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए।

और एक संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का, और इन्होंने लिखा है कि प्रस्तुतकर्ता द्विवेदी जी प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज आप एक ही फिल्म में मेरे महबूब फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं और इस फिल्म के गाने भी हमारे दिल को छू रहे हैं, आज हमें बहुत सुकून मिल रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है अवनीश भाई, थोड़ा सा हो सकता है टाइपो एरर हो गई हो, अवनीश नहीं अरुणीश मेरा नाम है और ये है दिग्दर्शन और कविता गौड़। इन्होंने लिखा है कि आपका कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी और दिलचस्प किस्से जो अभी आपने साधना कट हेयर स्टाइल के संबंध में सुनाए वो बेहद अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों
1: कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
2: आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ। और दोस्तों आज की फिल्म है मेरे महबूब, और आज हम बात कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म के से जुड़े जो गाने हैं वो भी आपको सुना रहे हैं, और साथ ही साथ में इस फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से, कुछ सुनी कुछ अनसुनी और कुछ कही और कुछ अनकही बातें भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस फिल्म की कहानी की, तो आपको पता है कि इस फिल्म का बैकड्रॉप एक सामाजिक और मुस्लिम परिवार से जुड़ा हुआ ताना बाना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जी हाँ, जिसे हम AMU अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर पढ़ाई के दौरान अनवर हुसैन, ये जो करेक्टर है ये प्ले किया गया है, ये रोल निभाया गया है राजेंद्र कुमार के द्वारा। तो पढ़ाई के दौरान अनवर हुसैन को एक घूंघट वाली महिला से प्यार हो जाता है और वो उसे भुला नहीं पाता है, और वो लखनऊ का रहने वाला होता है। तो जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो लखनऊ जाता है, तब उसकी मुलाकात नवाब बुलंद अख्तर चंगेजी से होती है, और तब नवाब साहब अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अनवर को एक पत्रिका में संपादक की नौकरी दिलवाने की कोशिश करते हैं। और नवाब अनवर से अपनी बहन हुसना, और हुसना का किरदार निभाया है हुसना बानो, ये रोल प्ले किया है साधना ने। साधना ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रोल को निभाया है। और जब नवाब साहब अनवर से कहते हैं कि वे उनकी बहन हुसना को यानी साधना को कविता सिखाएं, जिसके बाद वो उनको कविता सिखाने लगता है, और कुछ जबरदस्त और दिलचस्प नाटकीय मोड़ आते हैं इस फिल्म में। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि अनवर साहब को पता चल जाता है कि दरअसल ये जो घूंघट वाली महिला है, ये वही महिला है जो उनके साथ AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी। और इसके बाद दोनों करीब आ जाते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, और फिर शादी का ऐलान होता है। और औपचारिक तौर पर सगाई समारोह होने से पहले, वही आपको पता ही है कि किस तरीके से दोनों के परिवार

वालों ने इस रिश्ते को लेकर पहले नाराज होते हैं, बाद में दोनों को मना लिया जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन तभी एक मोड़ आता है कि कर्ज में डूबे नवाब को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जल्द ही वो अनवर को एक नजमा के साथ, नजमा का जो रोल है वो अनवर की बहन है और ये रोल निभाया है निम्मी के द्वारा, और उनका जो ये रोल है वो एक वेश्या का रोल है, और इसके बाद उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वे उनके साथ दिख जाते हैं और तब तो हंगामा हो जाता है, और इसके बाद अनवर की हवेली और संपत्ति की नीलामी के का दौर आ जाता है, ऐसा जो है फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। लेकिन क्या अंत में हुस्ना की शादी अनवर हुसैन से हो पाती है या नहीं, या फिर नवाब का जो किरदार निभाया है ना वो हुस्ना के भाई हैं और ये किरदार निभाया गया है अशोक कुमार के द्वारा, और जबकि मुन्ने राजा यानी बुलंद अख्तर के चचेरे भाई का किरदार निभाया गया है प्राण के द्वारा, और अनवर का दोस्त बिंदादीन रस्तोगी ये किरदार निभाया गया है जॉनी वॉकर के द्वारा। तो दोस्तों इस कहानी के अंत में क्या होता है कि क्या हुस्ना की शादी अनवर हुसैन से हो पाती है या नहीं हो पाती, और क्या नवाब को उनका सारा सामान वापस में मिल पाता है या नहीं, उनकी हवेली और बाकी सामान, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, क्योंकि अगर हमने आपको यहाँ पर यह बता दिया तो फिर फिल्म का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इस वजह से आपको इस फिल्म का अंत हम आपको नहीं बताते हैं, लेकिन ये फिल्म बेहद अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। और आगे बढ़ने से पहले इस फिल्म का एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का संदेश आया है और उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है और कहा कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है।

दोस्तों, अगर इस फिल्म से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया कि मशहूर साधना कट हेयर स्टाइल की शुरुआत इसी फिल्म के जरिए हुई। और आपको शायद ही पता हो कि इस फिल्म का पहले जो नाम था वो था सिर्फ महबूब, और बाद में इस टाइटल को और अधिक रोमांटिक बनाने के लिए और यूं कह लें कि थोड़ा सा पर्सनल टच देने के लिए इसमें मेरे शब्द को जोड़ा गया और इस तरह से इस फिल्म का नाम हुआ मेरे महबूब। और अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के टाइटल ट्रैक की, यानी जब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में इस फिल्म का टाइटल ट्रैक मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम ये रिकॉर्ड किया गया, तो जो इस फिल्म के निर्देशक हैं एच एस रवेल साहब, वो कुछ खास खुश नहीं थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस गाने में म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा बहुत कम है तो शायद नहीं चलेगा। लेकिन जाने माने संगीतकार नौशाद साहब इस फिल्म में संगीत दे रहे थे और उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि ये गाना ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, और हुआ भी ऐसा। और ये गाना हिंदी फिल्मों के इतिहास में सबसे रोमांटिक गानों में से एक है। और अंत में आपको ये भी बता दें कि 1963 में रिलीज हुई ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ये फिल्म साबित हुई थी। और एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि इसी फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को बॉलीवुड का जुबली कुमार बनाए रखने में बड़ी मदद मिली थी, क्योंकि राजेंद्र कुमार की जो फिल्में आती थी वो अक्सर सुपर डुपर हिट हुआ करती थी और उनकी फिल्में जुबली मनाती थी और इसीलिए उनका नाम जुबली कुमार बन गया था। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर आपसे किसी न किसी मोड़ पर इसी चैनल में किसी न किसी कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन मैं अमन देव पहला चुनवी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा उत्पादन रक्षा बरामद के मित्र देशों राजनीतिक सहयोग च लगातार नवी उचाइया छू रहा है। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम च श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी समर्था लगातार वधा रहा है। अज देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। रक्षा

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सिफारिश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और

0: कला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अस्वद के खिते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज खातिर रखें। और भारतीय मौसमियात महकमे ने वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर ये कहते हुए मुल्क के जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया है कि खा ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल एक खुसूसी शौर्य विजय यात्रा का अहतमाम किया गया है जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है एक सफर एक मुल्क एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफर सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तस्करा किया।
1: कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्र गिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। उन्होंने काबिले कद्र हुनरमंदी, जज्बे और सब्र तहमुल का मुजाहरा करने पर नौजवान इख्तराकारों की सताइश की। कैच द रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: मन की बात के अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर आज़म ने साइंस ओलंपियाड का तस्करा करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने मन की बात के आज के नशरिये में कश्मीर की रिवायती वगू चटाई का तस्करा किया जो सरकंडे और धान के तिनकों से बनाई जाती है। माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली

0: जा रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की वगू चटाई को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में लोग एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के जरिए फितरत के तई अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तकरीबन 60 साल बाद गुजरात के गिर जंगलात में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल परिंदा फिर से वहां अपना मस्कन बना रहा है। मन की बात के आज के नशरिये में जनाब मोदी ने त्रिपुरा के मौसीकी चोंग प्रेंग साज का भी जिक्र किया।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी मनाई जाएगी। इस तनाजुर में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत में कई बाइसे तरगीब पहलू शामिल थे, लेकिन एक टीचर का रोल उनके लिए सबसे अजीज था। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने अगले महीने मनाए जाने वाले योम आज़ादी का तस्करा किया और सभी लोगों पर जोर दिया कि वो माई गोव पर 15 अगस्त से पहले बड़ी तादाद में अपने अपने ख्याल और तजवीजें शेयर करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह फौज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मादर वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करके बहर असवद में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों पर रोजगार के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो इस तरह का काम कबूल करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का पूरी एहतियात के साथ जायजा लें। एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग इस तरह के रोजगार पर जाने का इरादा रखते हैं उन्हें इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करना चाहिए। भारतीय मौसमियात महकमे ने वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन के दौरान शदीद बारिश से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुँच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की और सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे असवद के खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज़ खातिर रखें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Man Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to countries scaling new heights in defense production.

0: and space sector. Mr. Modi says he's proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports, or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
1: आज कारगिल विजय दिवस है. ये दिन हमें गर्व से भर देता है. ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है. कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था. उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ.
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है. जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए. इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही. मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है.
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
0: इन दिस एडिशन ऑफ मन की बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेंशन्ड कश्मीर्स ट्रेडिशनल वागू मैट, व्हिच इज क्राफ्टेड आउट ऑफ रीड्स एंड पैडी स्ट्रॉ. मिस्टर मोदी सेड the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और

0: और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम जी, वे जापान में काम

0: कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स।

0: ओल्ड सॉन्ग बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ, इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है, पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है, इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव

0: अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयी दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दरअसल आकाशवाणी दिल्ली का नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 प्रोग्राम पिन मीडिया में दोनों FM के जो आकाशवाणी करगिल शीना प्रोग्राम पुनर्फ्रोचित मजद प्रोग्राम फ्रोचुखन पिन मोहम्मद इब्राहिम
3: शिना पुनर प्रोग्राम जा मो मोहम्मद इब्राहिम बड़ा लाख हाजिर हन सरजारू अजुकी प्रोग्राम जा मुश्किल थे बुजुन जवानो बारार समाज या जवान कचा अहमियत थे निस बारार मुर कलेक थोड़क फायरी बुजुन तुनी प्रोग्राम जा एक इंट्रिक जनाब डॉक्टर शिजात अले जो अच्छो तहफुज बारार का मिशार थे बुजुन तो सरजारू सरजारू नौजवान ही कनो कोम को एक बड़ी ताकत बिल جنی سجنارک بل کنو حکومو کنو حکومو ترقی جوان بدولت بینی اگر کنو حکوم جا جنی صحیح تعلیم و تربیت تھی وقت سے سکوم ہمیشہ رو آگے شچون ہوں انی جوان بدولت جنر اگر صحیح پونک پشری صحیح نمائی بل تو

0: से सुवारे का पत्ता भी था कि जैसे कि मेरा राजा जो दारोक्रोम प्रोटेक्ट कैंसर खाने जो थे फोन बेस दारोक्रोम थे ने वर्करी हां या जो जग दारोक्रोम थे ने से सनग्लासेस यूज चुनी जरूरी बिल से अगर ब्राइट सनलाइट हो सकोनी। अच्छा स्मोकिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्मोकिंग भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा डायबिटीज को कंट्रोल करना है जनाब, तो ये छोटी छोटी चीज यूजुअली कैटरेक्ट जो है ज्यादा तकलीफ नहीं कराता है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को किसी मरीज को कैटरेक्ट से डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम करा रहा है तो लास्ट ऑप्शन असोनी जो फ्रेचो की सर्जरी थी होनी सर्जरी जो थे जो नॉर्मल लेंस है ओपेक ब्लू लेंस से सिखा लेता तो आर्टिफिशियल लेंस एक भी है जो इंट्राओकुलर लेंस ना आईओएल आईओएल को उधर प्लेस कर देते हैं ना, तो वो एक ये एक डेफिनेटिव जो है मैनेजमेंट होता है, यही एक रास्ता है, उसके अलावा हम उसको कैसे ट्रीट नहीं कर सकते।
1: या डॉक्टर साहब मेहरबानी। तो बड़ा एक आम तौर पे सुपाचन जो बीमारी एक अच्छो ग्लूकोमा आज बारे तारीख का जीवन जो मेहरबानी।
0: ग्लूकोमा तो सबसे डेंजरस बीमारी भी जो ग्लूकोमा सबसे डेंजरस अच्छो बीमारी जो जो को वजह क्योंकि आने से जो बेनो असल में सबसे पहले तो रे सेंसो रीजन रहते जो जो को वजह भी नहीं आनी असली असली जो असली अच्छो या रो एक रो वो एक रेजुम और रो अच्छो या रो एक्सेस रहते ना एक्वेस ह्यूमर थे जो तो जरूरी मिला अच्छो कार्यो सो प्राइजू बड़ा सो नॉर्मली ड्रेन का बेनो जो ड्रेनिंग एंगल के थ्रू सिलिम्स कैनल के थ्रू ड्रेन का बेनो नॉर्मली हो जाता है ड्रेन। अब प्रॉब्लम जो बिने जो कि सो ड्रेनिंग एंगल ब्लॉक बोन तो अब फ्लूड तो प्राइजू हूँ कंटिन्यू सो ड्रेन बोनी इस तरह से जगह ले लीजिए इसी वजह जो बेने की अच्छो या रो सो दलबो दलबो बिल्डअप बेनो तो इसी वजह जो बेनो अच्छो जाए प्रेशर दब लाओ बेनो बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब वो प्रेशर क्या करता है वो ऑप्टिक नर्व एनी असनी जो अच्छो जो नर्व एनी ना रेनी जो सिग्नल ले जाती है ब्रेन को से नर्व नर्व फाइबर से सो नर्व फाइबर से ना से दल वो डैमेज बेना सो प्रेशर हो जाए सो प्रेशर हो जाए दल वो डैमेज बेता तो उससे शेयर आ रही से हो जाए। असल में अब प्रॉब्लम इनसे जो है जो कि प्रॉब्लम यानी कि स्टार्टिंग जो स्टेज है जो स्टार्टिंग में मरीज पता भी नहीं उसकी मरीज एक प्रॉब्लम गई थे बिल्कुल पता नहीं चलता है जब तक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स डैमेज नहीं बेन तब तक इंसान ने सिम्टम्स के नहीं जीजेगा पता ही नहीं चलता है इसीलिए इसी वजह अनसर जो साइलेंट किलर ऑफ द साइट कहा ये साइलेंट थीफ ऑफ द साइट कहा जाता है क्योंकि ये चोर साइलेंट चोर है बिल्कुल खामोशी से ये हमारी आंखों को आंखों की चोरी नजर की चोरी कर लेता है हमें पता भी नहीं चलता है तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं थोड़ा बात करूं तो उम्र के साथ साथ इसके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं।
1: अच्छा, उम्र के साथ।
0: अच्छा जी उम्र के साथ साथ अगर मान लो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है किसी के बाप को है माँ को है या भाई बहन को है तो उनमें जरूरी है कि वो जो है जल्दी स्क्रीनिंग कराते रहे कंटिन्यू स्क्रीनिंग कराते रहे ठीक बिल्कुल जो
1: बिल्कुल
0: बड़ा डायबिटीज हाइपरटेंशन अगर किसी को है ये चीजें जो है करा सकती है तो हम इसको
1: जो
0: जी
1: सवाल
0: जी
1: ऐसे खोजो कि अनु ग्लूकोमा थे मरज यानी बीमारी अनु जेनेटिक अनु सोचे एक बेंद जो जैसे अगर एक को माँ मालू जो हूँ तो
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: बाल बाल मुलाय जो बोनी जे
0: नहीं
1: हिंद जो
0: फैमिली नॉर्मली यानी 50 60 साल के बाद नॉर्मली बनी अगर एक ही फैमिली हिस्ट्री है तो मेरी जगह बोनी चांस है यानी 40 साल में भी हो सकता है पहले इसीलिए हमेशा हिस्ट्री कि अगर एक अजीबा बो रहे या एक हम यानी प्रॉब्लम है तो सिर्फ बाल मुलाय और जो है मेरे 40 साल के बाद जो है एग्जामिनेशन छूनी जरूरी एग्जामिनेशन जो थे जो सिर्फ स्क्रीनिंग से ग्लूकोमा रहे ग्लूकोमेल जो थाना डायग्नोसिस से सबसे मेजर प्रेशर चेक थाना अच्छे जो और प्रेशर कचा को नॉर्मल हम दन सोचा के ना
1: ठीक
0: अच्छा सोचा के बड़ा ड्रेनिंग मेरे मेजर रेजर जो कि ड्रेनिंग एंगल हूं थारो रो सो ड्रेनिंग एंगल चेक ना सो ब्लॉकेज तो मैं सोचा के ना जो ठीक
1: ठीक
0: बिल ना बड़ा ऑप्टिक नाव का कचा जो कचा डैमेज भी नहीं सोचा के ना सोचा के ताकि जल्दी अगर पता भी ली तो जल्दी बेसू रेत हूं क्योंकि ग्लूकोमा एक बार अगर भी ली अगर डैमेज फॉर एग्जाम्पल उसने कितने फॉर एग्जाम्पल 50% नर्व फाइबर्स को डैमेज कर लिया अब उन नर्व फाइबर डैमेज फाइबर्स को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं वो इरिवर्सिबल है ठीक है
1: बिल्कुल
0: लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू हम जो है फर्दर डैमेज को रोक सकते हैं फर्दर 50% तो हो गए मान लो डैमेज तो 50% नर्व फाइबर्स को हम बचा सकते हैं दवाई के थ्रू बचा सकते हैं या सर्जरी करके बचा सकते हैं। दवाई में हम सर यहाँ पे दो दो ये ड्रॉप्स कुछ डालते हैं दो किस्म के ड्रॉप्स होंगे हम यूजुअली आसान लैंग्वेज बोला जाए तो एक तो ऐसे ड्रॉप्स होते हैं जो हम मैंने बोला था ना सर जो एक्वस ह्यूमर बनता है उसको कम कराते हैं कम कम कम बनवाते हैं तो इसकी वजह से भी प्रेशर कम हो सकता है या दूसरा जो ड्रेनेज है उसको इंक्रीज कराते हैं।

0: ताकि अंदर प्रेशर कम बना रहे, ताकि वो डैमेज ना हो, फर्दर डैमेज ना हो। तो बाकी उसके अलावा जो डेफिनेटिव सर्जरी होगी, वो डेफिनेटिव सर्जरी हम ट्रबिक्युलोप्लास्टी करते हैं, तो उसको उसकी वजह से वो ठीक हो सकता।
1: आणि ग्लुकोमा जो प्रिव्हेंशन देखें दे जो मरा जो बेसु कनो बचाय बोने आम जक से जोक थिन जूस आणि बीमारी बचाय
0: हाँ,
1: बोने चाहिए।
0: ये सबसे इम्पोर्टेंट है जनाब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा कि इस टाइम में जैसे कि मैं रजा हूँ, सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, स्मोकिंग वगैरह जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज लेके रहें, जो बीपीओ प्रॉब्लम है, शुगर का बीपी है, से कंट्रोल से छोड़िए। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इंसान शुगर है, बीपी है, तो निगलेक्ट नहीं करना है, उसको कंट्रोल में रखना है, मतलब उसको टेस्ट करते रहना है, देखना है बड़ा, अगर लग रहा है कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं या, तो जल्दी जाके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करना है। खुसूसन ग्लोकोमा के लिए तो 50 साल के बाद जाके साल में एक बार तो कम से कम ये चीजें में जो अभी बोली, इन प्रेशर चेक करना, एंगल देखना, ऑप्टिक नर्व डैमेज तो नहीं है, ये चीजें सारी देखनी बहुत जरूरी है। ये हम अगर टाइमली पहले करेंगे तो आराम के साथ हम इसको बचा सकते हैं, मतलब अंधापन होने से मरीज को।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बड़ा एक बीमारी एक है जो लाई सोच ले लें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी थे ने आ सुबारी का टाइप रजी बनो जो कि जोग बुबेनी अच्छा जोग थून हो जो से इलाज करो या कन किस्मों खुराक खून हो जो या जोग प्रिवेंशन जोग थे हो जो असने ऐसा जरूर मेहरबानी रजी बुझो।
0: डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रॉब्लम बेनी जो असली यानी डायबिटीज हो जाए भी नहीं, डायबिटीज तो कोते जैसे कि पता है कि डायबिटीज सबसे कॉमन बीमारी बेनी जो कोते इंडिया जा,
1: बिल्कुल
0: इनकी
1: बिल्कुल
0: कहते हैं कि 2025 तक इंडिया जो है डायबिटिक डायबिटीज के कैपिटल बनेगा वर्ल्ड, डायबिटीज कैपिटल वर्ल्ड का। अभी भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं डायबिटीज के, तो डायबिटीज डायबिटीज से बाकी का प्रॉब्लम प्रॉब्लम लाए भी नहीं,
1: ठीक
0: तो उनमें से एक प्रॉब्लम अच्छो जब बेनी जू से बिन डायबिटिक रेटिनोपैथी आंसली जो बिन से अच्छो जा जो ब्लड रही ब्लड वेसल सिंह से डैमेज बेनी जू ठीक मिलता प्रोलॉन्ग ब्लड शुगर सचू और वो अच्छो जो तो से सोए जे ये अच्छो अन्य नस जे ब्लड वेसल से नहीं से डैमेज बेनी नहीं सो जो सिम्टम्स जो एक तो मान लो फॉर एग्जांपल एक डायबिटिक पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट टू शुगर कंट्रोल नहीं ठीक नहीं से सर मान लो अगर धुंधला चीजें मान लो उसको धुंधला दिख रहा है, उसको सही से वो नहीं हो रहा है, विजन लॉस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको जल्दी चाहिए जाके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कराए, दिखाए कि क्या तकलीफ है, नहीं तो बाद में अगर ऐसे ही रहने देंगे तो बाद में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं देख के रखेंगे तो पतो अच्छो या पतो ब्लीडिंग बोनी चांस है, जो सतरदनी विट्रियल हिमरेज
1: अच्छा लेल बजू
0: अच्छा
1: बजू अच्छो रहे
0: लेल बोलूँ पतो अच्छो पतो लेल बोलूँ बड़ा बेनी जो उससे सी वजह रेटिना रेटिना पूरा डिटेज वो डिटेज बोने जो वो वहां से निकल जाती है डिटेचमेंट थे सर रेटिना डिटेचमेंट थे जो, और उसकी वजह से जो मैंने बोला था ग्लोकोमा होता है पहले वो इस, हाँ इसकी वजह से ग्लोकोमा भी डेवलप हो सकता है जनाब ठीक मिलता, तो एट लास्ट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसीलिए इसका इसका यही है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स है उनको हम कंट्रोल करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को लंबे टाइम से डायबिटिक पेशेंट है, लंबी टाइम से डायबिटीज चल रही है, उसको हमें खुसूसन ध्यान देना है। अगर किसी का अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है उस पर हमें ध्यान देना है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वेट ज्यादा है, ये चीजों को हमें जो है ख्याल रखना है, इन चीजों को कंट्रोल करना है। डायबिटीज को मैनेज करेंगे, ब्लड शुगर को मॉनिटर करेंगे, जैसे कि HbA1c टेस्ट है कि 3 दिन महीने में हम कर सकते हैं, वो करके देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वैल्यू ज्यादा है तो हमें जाना है डॉक्टर के पास, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाके उसको मैनेज करना है, और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाके स्क्रीनिंग करनी है आंखों की, बड़ा कोलेस्ट्रॉल कम छोड़ो, स्मोकिंग टबाको कम छोड़ो, विजन लॉस विजन चेंजेस जो आते हैं उसमें ध्यान देना है। तो इन चीजों से हम बचा सकते हैं अपने आप को,
1: अच्छा बिल्कुल
0: मतलब
1: जी
0: डैमेजेस
1: बिल्कुल
0: परमानेंट डैमेजेस से बचा सकते हैं।
1: ठीक जी ठीक। डॉक्टर साहब मैंने आप बीमारी जैसे कैटरेक्ट सर्जरी का थो शाहू की सर्जरी का ऐसे कोंडेन करे ग्लूकोमा बोने डायबिटिक रेटिनोपैथी भी ली आने वाले रजी का तो मुसु तुरे एक सवाल समझू कि अन्य बीमारी ट्रे बुझे थो रजी का मुख्तसरन ऐसे कोंडेन करे आ रजी बुझो कि कनी किस्मों खुराक डाइट छोनो जी फकर डाइट बारे रजी बुझू कि जो डाइट थोनो जी की ताकि असने अच्छे बीमारी जो
0: जनाब
1: महफूज रची बुझे।
0: डाइट सबसे जरूरी यानी बिल्जू कि एक तो सबसे पहले सब्जी इनजू सब्जी सब्जी खोनी जरूरी बिल, फ्रेश फ्रूट्स खोनी जरूरी बिल
1: नीलो
0: मिल
1: सब्जी है जो
0: नीलो सब्जी बिलो कनुगा।

0: सब्जी नील और सब्जी के खुसूसन बड़ा, जैसे कि एक बीमारी के लिए हम तो सुन रहे विटामिन ए डिफिशियंसी वजह का ब्लाइंडनेस बोनी चांस मिली जो, तो से बगैर का बड़ा लाए बीमारियां पे नहीं, जैसे डिफिशियंसी हो जाए बोनी चांस क्या, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन सही रखनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए बंदे को, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है ब्लाइंडनेस के लिए, या बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है बॉडी, लेकिन ब्लाइंडनेस में भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो इसके अलावा यानी बड़े ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो भी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ये चीजों के अलावा हमारी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी जरूरी भी, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हफ्ते में 4-5 बार आधे आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अच्छा, एक तो ये मैं आदतों के बारे में अगर बताऊं तो आप आंखों को क्लीन साफ रखना जरूरी है, गंदे हाथ से या गंदे कपड़े से टच नहीं करना आंखों को, हेल्दी फूड जैसे कि मैंने अभी बोला वो खा सकते हैं हम। अच्छा, इग्नोर सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करेंगे हम, अगर आपको मैंने जैसे कि पहले बोला कि फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को धुंधला दिख रहा है या डबल डबल विजन दिख रही है, तो ये चीजें जो है बंदे को इग्नोर नहीं करना है, जाके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से मिलना है, उससे बात करनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि बाहर काम करने वाले जो बिल्कुल तेज रोशनी में काम, धूप में काम करते हैं, तो उनको ये सनग्लासेस पहनने की जरूरत है। तो उसके बाद हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आजकल के जमाने में जो स्क्रीन है जनाब, स्क्रीन ये बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है अभी इस जमाने में,
1: इसके
0: पहले
1: मतलब
0: ये नहीं हुआ
1: जो जो
0: करता था।
1: स्क्रीन जैसे राजीव मजनू जो
0: स्क्रीन
1: स्क्रीन
0: जैसे कि जैसे हंसने रहे हाँ जो ये अभी, पहले तो टीवी हुआ करता था वो, तो चलो फिर भी एक हिसाब से ठीक असली में अभी से तो बेहतर था, क्योंकि टीवी एक डिस्टेंस से कैसा चले जाए, जो जैसे हम सामने
1: बिल्कुल
0: जाकर थोड़ी देखते थे, नहीं देखते थे, थोड़ा दूर से देखते थे, लेकिन तकलीफ अब प्रॉब्लम ये हो गई है छोटे से छोटे बच्चे के लिए, 1-1 साल के बच्चे के पास, 6-6 महीने के बच्चे के सामने मोबाइल रखी जाती है, और उधर से जो लाइट निकलती है व्हाइट लाइट वो बहुत डेंजरस होती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लाइंडनेस का अभी। ठीक मिलता तो से सिखा जो एक तो सबसे मुश्किल टिप्स जो लाजम जो कि आनी रे से जा मोबाइल जे एनी एक यानी उसमें रीडिंग मोड आता है उसको ऑन करके रखना है, ताकि वो ब्राइटनेस कम आए, बड़ा ब्राइटनेस थोड़ा कम करके रखना है, ज्यादा से भी जो और ब्रेक लेना जरूरी है, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टाइम लाओ फतो तो उससे वजह आंखों में थकावट होती है, दर्द होता है, तो ब्रेक नहीं होनी जरूरी बिल स्क्रीन टाइम से, जितना हो सके कम कम यूज करने की कोशिश करनी चाहिए।
1: तो अन्य इंटरेस्ट ने राजू के प्रोग्राम खेन छुपा पेनो मरद या इजाजत अस्सलाम वालेकुम खुदाया درین تشینا پروگرام پنر یعنی نت پین میڈیا میں بھی دونوں فہمی کا جو اکاشوانی کر گیا لین وقت پر تو سو سم سم سو کیسا تھا اکاشوانی دہلی کا نبی تو سو تو غا سخبا اردو سروسی پروگرام اندر لے بہتر لے لاؤ ڈاؤں پاسد

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए आपको इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में बता दें। अब से कुछ देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। मेरी पसंद प्रोग्राम का वक्त रहेगा 3:15। 3:30 पर आप सुन सकेंगे प्ले रेत समंदर। इसे तहरीर किया है जनाब जमन हबीब ने। 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी मौसिकी। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी। 5 बजे हमारी दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। वक्त है खबरों का।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबों में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अस्वद के खत्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलूज खातिर रखें। और अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर यह कहते हुए मुल्क के जाबाजों को खिराज अकीदत पेश किया कि ख्वाह ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है कि जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल एक खसूसी शौर्य विजय यात्रा का एहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है एक सफर एक मुल्क एक सलाम।

मोदी ने कहा कि ये सफर सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बैरिया में INS महेंद्रगिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तذکرہ किया। वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। कैच दी रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है। मन की बात के अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड का तस्करा करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तालिबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने मन की बात के आज के नशरिए में कश्मीर की रिवायती वेगू चटाई का तस्करा किया जो सरकुंडे और धान के तिनकों से बनाई जाती है। माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की वेगू चटाई को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वजीर आजम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में लोग एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के जरिए फितरत के तई अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी मनाई जाएगी। इस तनासुर में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत में कई बायस तरकी पहलू शामिल थे लेकिन एक टीचर का रोल उनके लिए सबसे अजीज था। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने अगले महीने मनाए जाने वाले यौम आजादी का तस्करा किया और सभी लोगों पर जोर दिया कि वो MyGOV पर 15 अगस्त से पहले बड़ी तादाद में अपने अपने ख्याल और तजवीजें शेयर करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की तज़ीम के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मातृ वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल जंगी यादगार पर 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीब की क्यादत की और 1999 की करगिल लड़ाई के जाबाजों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा ने वहां एक गुल दायरा नजर किया और उन बहादुर सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान अजीम कुर्बानी पेश की थी। इस तकरीब में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, फौज के सरबरा और दीगर मुमताज अफराद, नीज शहीदों के अरकान खानदान ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल की लड़ाई न सिर्फ भारत की फौजी और सिफारती फतह थी बल्कि ये एक ऐसा यादगारी और तारीखी लम्हा था जब दुनिया ने भारतीय फौजियों की बेमिसाल दलेरी और बहादुरी का मुशाहिदा किया। 4,474 यात्रियों का एक जत्था आज सुबह सवेरे सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के बुनियादी पड़ाव से रवाना हुआ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का रास्ता खुलने के बाद यात्री रवाना हुए हैं। वहां चट्टानों के टुकड़े गिरने से रास्ता बंद हो गया था। हुकाम ने बताया कि 166 गाड़ियों के काफिले में यात्रियों का 19वां जत्था सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में रवाना हुआ। सालाना अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ अगले माह की 28 तारीख को खत्म होगी। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करके बहरे अस्वद में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों पर रोजगार के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो इस तरह का काम कबूल करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का पूरी एहतियात के साथ जायजा लें। एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग इस तरह के रोजगार पर जाने का इरादा रखते हैं उन्हें इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करना चाहिए। मौजूदा महाजारा

0: के तनातुर में बहर अस्वद और उसके अतराफ नीज उससे मुतसिल बहरी इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल अब भी बहुत कशीदा है। इन आबी गुजरगाहों से होकर जाने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों समेत बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना करना पड़ रहा है। इस साल अप्रैल के बाद कमर्शियल बहरी जहाजों पर इस तरह के हमलों के वाकयात में इजाफा देखने में आया है और इसकी वजह से 5 भारतीय शहरियों की अलमनाक मौत भी हो चुकी है। अपनी एडवाइजरी में वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरी जहाज के रास्ते मुतालिका बंदरगाह, सिक्योरिटी इंतजाम, बीमे की सहूलत और इमरजेंसी इकदाम के ताल्लुक से आजिरों या भर्ती करने वाली एजेंसियों से तफसीली जानकारी हासिल कर लें। यूक्रेन में भारतीय सफारत खाने ने कहा है कि वो कल ओडेसा बंदरगाह पर माल बरदार बहरी जहाज MV AGN रागनर पर हमले के वाकयात के बाद सूरतहाल पर करीबी नजर रखे हुए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सिफारत खाने ने कहा कि इस बहरी जहाज में 4 भारतीय शहरी सवार थे। इनमें से 2 अफराद के महफूज होने के बारे में तस्दीक हो गई है, जबकि दीगर 2 अफराद के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। भारतीय सिफारत खाने ने कहा कि तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है और वो मुतालिका हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए हैं। आला दर्जाबंदी के हामिल अनाज सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वाश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाज ने कनाडा की नियाग्रा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी के हामिल सलीम को 11-3, 11-7, 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया था। ताहम अनाज सिंह ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजारादारी को खत्म किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलावी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम के साथ हिना मौज हाजिर है, आदाब कबूल कीजिए। समीन, आज हिंदुस्तान कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें अपनी कुर्बानियों से सरशार किया है। आइए अपने शहीदों को नगमों के जरिए खिराज अकीदत पेश करें प्रोग्राम मेरी पसंद में।

आज यानी 26 जुलाई हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। ये दिन सिर्फ एक फतेह का जश्न नहीं है सामीन, बल्कि उन जाबाज फौजियों के कुर्बानियों को सलाम करने का भी दिन है जिन्होंने दुश्मन की गोलियों के बीच तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखा। सन 1999 में कारगिल की बुलंद और बर्फ से ढकी चोटियों पर हिंदुस्तानी फौज ने बेमिसाल जुर्रत, सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा किया। बेहद मुश्किल हालात, सख्त मौसम और दुश्मन की मजबूत पोजीशन के बावजूद हमारे जवानों ने हर चोटी पर तिरंगा लहराया और कामयाबी का परचम बुलंद किया।

सामीन, करगिल हमारे लिए ये पैगाम देता है कि वतन की मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जिसके लिए हमारे जवान अपनी सबसे कीमती दौलत, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। आज हम उन तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनके खानदानों के सब्र और हौसले को सलाम करते हैं और ये अहद करते हैं कि मुल्क की तरक्की, अमन और यकजहती के लिए हम हमेशा अपना किरदार निभाएंगे।

आज का दिन मुल्क के उन बहादुर सपूतों के नाम है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत की और दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान की सरहदें महफूज हाथों में हैं। सरहद पे जो शहीद हुए उनका यही पैगाम, वतन से बढ़कर कुछ नहीं, यही हमारा मुकाम। तमाम बहादुर फौजियों और कारगिल के शहीदों को दिल की गहराइयों से सलाम, इसी दुआ के साथ कि हमारा मुल्क हमेशा अमन, तरक्की और इत्तेहाद की राह पर गामजन रहे। ये आखिरी नगमा आपकी समातों की नज़र इस प्रोग्राम का।

ये दुनिया बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया।

इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरी अवेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए प्ले रेत समंदर। इसे तहरीर किया है जनाब जमन हबीब ने।

0: और जरूरत भी नहीं जान, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं।
1: मंजिल? कैसी मंजिल?
0: ये जगह, ये जगह हमारी मंजिल है।
1: मैं समझी नहीं।
0: अरे समझाता हूँ, जरा जरा दम तो लेने दो।
1: इतनी तेज में पहले कभी नहीं दौड़ी। आखिर तुम्हें अचानक क्या दौड़ने की सूझी? अच्छे भले हम वहाँ उस पिकनिक स्पॉट पर थे, कितना मजा आ रहा था।
0: आ तो रहा था।
1: फिर वहां से भागे क्यों?
0: बस मुझे यहाँ पहुंचना था।
1: क्यों बोलो ना, चुप क्यों हो?
0: जान, इस जगह को जरा गौर से देखो और बताओ तुम्हें ये जगह पसंद है?
1: क्यों?
0: नो क्वेश्चंस, बस मन की आंखों से देखो और बताओ।
1: ऐसी क्या खास बात है जगह?
0: मैंने कहा ना, सवाल नहीं, बस बताओ।
1: इट्स ब्यूटीफुल। अरे ये तो उस पिकनिक स्पॉट से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये साहिल, वो बड़ी बड़ी चट्टानें, वहां साहिल पर वो टूटी हुई नाव, सामने समंदर, हर चीज अपनी असली हालत में, कहीं कोई बनावट नहीं। वो देखो क्षितिज की ओर, समंदर पे झुका हुआ आकाश अपनी सदियों की प्यास बुझा रहा है।
0: और
1: सूरज की किरणों में नहाई हुई समंदर की बेचैन लहरें साहिल की चट्टानों पर कैसे कैसे अपना सर पटक रही है।
0: और
1: वो देखो, वो जहाज समंदर के सीने पे तैरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। उसके पीछे धूप में चमकते हुए बादल और ऊपर दिन भर का थका मांदा सूरज, जो बहुत जल्द समंदर की गोद में सर रखकर सो जाएगा।
0: फिर
1: समंदर की सुनहरी लहरें काली हो जाएंगी। और जब आकाश के माथे पे चांद की बिंदिया चमकेगी तो इन लहरों पर चांदनी की लंबी चौड़ी दूधिया चादर बिछ जाएगी।
0: और
1: ऊपर आकाश में उड़ते हुए परिंदों को देखो, ऐसा लगता है जैसे लहरें आकाश में भी उठ रही हो।
0: जान, हाउ रोमांटिक, एक्सीलेंट, तुमने तो पूरी कविता कह डाली।
1: रियली, इतनी खूबसूरत जगह के लिए जो भी कहूँ कम है।
0: दैट्स राइट, तो तुम्हें ये जगह पसंद है?
1: किसे पसंद ना होगी भला?
0: नहीं, मुझे बस तुम्हारी पसंद से मतलब है।
1: रियली?
0: तुम्हारी इन कचरारी आंखों और गुलाबी होठों की कसम।
1: तुम कितने अच्छे हो।
0: मैं कितना अच्छा हूं?
1: मैं क्या?
0: एनीवे जान, तो तुम्हें ये जगह पसंद है?
1: पसंद है? अरे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत पसंद है।
0: मुझसे भी ज्यादा?
1: तुमसे थोड़ा कम। यू नो डार्लिंग, बचपन से मेरा एक सपना था कि ऐसे ही किसी समंदर के किनारे मेरा एक छोटा सा घर हो और मैं अपनी खिड़की के पास बैठी दिन भर समंदर की लहरों को गिनती रहूं, फिर शाम के वक्त सूरज को समंदर में उतरते देखूं, और जब रात आए तो सफेद चांदनी को लहरों पर थिरकते देखते देखते मुझे नींद आ जाए।
0: सपना अच्छा है।
1: हाँ, सपना।
0: और अगर मैं ये कहूं जान कि तुम्हारा ये सपना बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है
1: तो मैं इसे तुम्हारा इस साल का सबसे अच्छा जोक मानूंगी।
0: और अगर मैं ये कहूं कि ये जोक नहीं तो?
1: तो मेरा ख्याल है कि हमें आगरे का टिकट कटवा लेना।
0: और अगर मैं ये कहूं? तुम्हारा मतलब है मैं पागलपन की बातें कर रहा हूँ?
1: और नहीं तो क्या?
0: जी नहीं, यही वो जगह है जहाँ हमारा मकान बनेगा।
1: यू मीन यहाँ हमारा मकान बनेगा?

있죠. 아닌 걸 썼으면.

0: समंदर के किनारे?
1: जी।
0: आई जस्ट कांट बिलीव इट।
1: यू मस्ट, क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं जा, देखो मेरी आंखों में झांक कर, देखो ना, इसमें ये समंदर है, इसका किनारा और तुम और मकान का नक्शा भी जो यहां तैयार होना है।
0: मगर
1: कुछ नहीं, इस साहिल पर हमारा मकान बनेगा जिसमें मैं रहूंगा और तुम।
0: इस वीरानी में?
1: इस वीरानी को हम आबाद करेंगे, हम इस रेत समंदर में महापुरुषों के फूल खिलाएंगे। हाँ, और तुम यहां खिड़की के पास बैठी हुई दिन भर मेरी कही हुई बातों को याद करके मुस्कुराया करो, और तुम्हारे उस मुस्कुराहट से समंदर पर भटके हुए जहाजों को सही दिशा, लहरों को नई जिंदगी और मौजों को नई रवानी मिलेगी।
0: फिर
1: शाम के वक्त खुद को बना संवार कर तुम मेरे आने का इंतजार किया करोगे।
0: फिर
1: मेरे घर पहुंचने के बाद तुम मुझे अपने नरम नरम हाथों से गरम गरम कॉफी पिलाए।
0: फिर
1: मैं दिन भर की थकान भूल कर शाम के सूरज की तरह तुम्हारी आंखों में डूब जाया करूंगा। फिर रात होगी
0: तो क्या होगा?
1: वही जो भंवरे और फूल, चांद और जगों और समुद्र और प्यास के दरमियान होता है, ऐसा ही होगा ना? बोलो चुप क्यों?
0: अगर आपकी रोमांटिक बातें खत्म हो गई हो तो चले यहां से।
1: आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं सच कह रहा हूं?
0: माय डियर हस्बैंड, यार यकीन करने की कोई वजह भी तो
1: लो। तुम्हें ने कहा था कि शहर के हंगामों से तुम डूब चुकी हो, लोगों की भीड़ भाड़, गाड़ियों के शोर और पॉल्यूशन से दूर रहना चाहती हो।
0: हाँ, कहा तो था।
1: बस तो तुम्हारे कहने पर ही मैंने मकान के लिए जगह चुनी है। यहाँ ना शोर है ना हंगामा, नेचर तुम्हारे सपनों के मुताबिक बिल्कुल रियल एस्टेट की तरह।
0: लेकिन हंगामों से दूर भागने का मतलब ये तो नहीं कि हम इस वीराने में आ बसे।
1: अरे वीराना कहाँ है? उधर वो वहाँ पिकनिक स्पॉट है जो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, और वहाँ वहाँ देखो वो उधर मछेरों की बस्ती है, आबादी भी ठीक ठाक है। ना जस्ट इमेजिन जान, एक तरफ पिकनिक स्पॉट, दूसरी तरफ मछेरों की बस्ती और बीच में हमारा मकान, कितना प्यारा लगेगा और कितना मजा आएगा यहाँ रहने में। और फिर शहर भी यहाँ से बस 40 मिनट की दूरी पर। अब बताओ 40 मिनट की कोई दूरी होती है
0: तो क्या सचमुच हमारा मकान यहाँ बनेगा?
1: नहीं, चार्ट पेपर पर मकान का नक्शा मैं बनाऊंगा, रंग तुम भर देना और
0: अरे अरे अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
1: अरे ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं?
0: ये तुमसे किसने कहा? तुम कहो और मैं यकीन न करूं, ऐसे तो हालात नहीं। अच्छा बताओ मकान कब तक तैयार हो जाएगा हमारा?
1: बहुत जल्द, फिर हम अपने पुराने मकान को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
0: That's great! ऐसे इतनी प्यारी जगह तुम्हें सूझी कैसे?
1: तुमने कहा कि तुम्हारा उस पुराने मकान में दिल घबराता है, बस मैंने मकान के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी।
0: wow.
1: ना शहर में एक तो जमीन की कीमत आसमान को छू रही है और उस पर दस और जमीने। और सच पूछो तो आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि बस शहर में दम घुटने लगता है।
0: मुझे तो वैसे भी धुएं से एलर्जी है।
1: चलो बस कुछ ही दिनों की बात है, हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पॉल्यूशन से तो छुटकारा मिलेगा और यहाँ की ठंडी ताजा हवा के झोंके हमारी रूह तक। क्या हुआ?
0: देखो समंदर की लहरें यहाँ तक आ गई हैं।
1: लगता है मेरी मोहब्बत इनमें समा गई है।
0: मतलब?
1: देखती नहीं तुम्हारे पांव चूमकर कैसी मस्ती है, थिरक रही है ये।
0: बस यही, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ सूझता है भला?
1: अरे वही जिसकी तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसे और क्या सोचेगा।
0: अच्छा अच्छा बस रहने भी दो ये चोंचले। ये बताओ ना हमारा मकान कैसा होगा? मेरे मतलब है कितने कमरे होंगे, कितनी खिड़कियां होंगी, कितने दरवाजे होंगे, मैं स्टडी कहाँ बनाऊंगी?
1: यही डिसाइड करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से

0: हम खड़े हैं ना वहां तक,
1: उस बड़े पत्थर तक।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं उससे आगे वो जो वो जो टूटी हुई नाव पड़ी है ना, वहां तक। वहां तक का एरिया हमारा है।
1: क्या वहां तक? इतना बड़ा एरिया?
0: यस, यहां से वहां तक का एरिया हमारा है।
1: अरे वाह, इसमें तो अच्छा खासा मकान बन जाएगा, कई कमरे निकल आएंगे।
0: कई कमरे?
1: हाँ कई कमरे।
0: रहे ना औरत की औरत। अरे हमें ज्यादा कमरों की क्या जरूरत है?
1: तो क्या इतने बड़े एरिया में एक कमरे का मकान बनाओगे?
0: इस सारे एरिया में सिर्फ मकान थोड़ी बनेगा, वो आधे हिस्से में तो हम बाग लगाएंगे, जिसमें तरह तरह के फूल होंगे, ऐसे ऐसे नायाब फूल जो किसी के पास ना हो।
1: फिर भी जरूरत के कमरे तो होने ही चाहिए।
0: जरूरत के कमरे?
1: जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, रेस्ट रूम, स्टडी, बेडरूम, गेस्ट रूम।
0: गेस्ट रूम? नो, हमारे मकान में कोई गेस्ट नहीं आएगा।
1: अच्छा, और अगर आ गया तो क्या से भगा दोगे?
0: और नहीं तो क्या, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई कबाब में हड्डी पड़े। यहाँ तो बस मैं रहूंगा और तुम, दूसरा कोई नहीं।
1: और मम्मी, क्या तुम मम्मी को हमारे साथ नहीं रखोगे?
0: मम्मी वो अपने पुराने मकान में रहेंगी।
1: क्यों, वो क्यों रहेंगी पुराने मकान में? वो हमारे साथ ही रहेंगी, समझे?
0: वो तुम समझती क्यों नहीं?
1: मैं सब समझती हूँ, तुम्हें मेरी मम्मी अच्छी नहीं लगती। तुम उन्हें बहुत समझते हो।
0: जान ये बात नहीं है।
1: बिल्कुल यही बात है, तुम कितने सेल्फिश हो ये मुझे आज पता लगा है। तुम्हारा कितना ख्याल रखती है वो, और तुम उन्हें अकेला छोड़कर आना चाहते हो।
0: अब मेरी भी बात सुनोगी या अपनी कहती जाओगी? भाई मैंने मम्मी से बात की थी, लेकिन वो अपने पुरखों का मकान छोड़ना नहीं चाहती।
1: तुमने बात की थी, सच कह रहे हो?
0: हाँ सच, बिल्कुल। और जान तुम भी एक वादा करो, कल जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो तुम भी हमारे इस मकान को छोड़कर नहीं
1: जाओगी। बस अशुभ बातें मत करो वरना मैं।
0: अभी तो चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और अब आंखों से मोती टपकने लगे।
1: तुम ऐसी बातें क्यों करते हो कि रोना आ जाए?
0: पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं हजार साल तक मरने वाला नहीं,
1: तो मैं हंस दूंगी।
0: ओके ओके, लेकिन मकान हम पुराने स्टाइल का बनाएंगे। आई मीन थोड़ा कुछ एथनिक टच होना चाहिए।
1: दैट्स लवली, मैं भी यही चाहती हूँ। समंदर के किनारे पुराने तर्ज का मकान कितना प्यारा लगेगा।
0: राइट, मकान की दीवारें सफेद होंगी, बिल्कुल आसमानी बर्फ की तरह सफेद, और छत छप्पर की बनेगी।
1: सफेद दीवारों पर छप्पर की छत?
0: जी।
1: ओह नो, दैट्स नॉट द राइट कॉम्बिनेशन।
0: ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए।
1: मेरे हिसाब से तो सफेद दीवारों पर रेड टाइल्स की छत ज्यादा खूबसूरत लगेगी।
0: टाइल्स? नो, इट हैज बिकम वेरी मच अर्बन नाउडेज। कुछ और सोचो।
1: और क्या सोचूं?
0: मेरे ख्याल से तो छप्पर की छत ही ठीक रहेगी, दरवाजे और खिड़कियों से लिपटी हुई लताएं मकान की खूबसूरती में और इजाफा करें।
1: ठीक है, खिड़कियों में पुराने स्टाइल के शीशे लगवाएंगे। हाँ तुम समझ रहे हो ना, फ्रेंच विंडोज। और दरवाजे के ऊपर दीवार के साथ एक बहुत बड़े हिरन के सींग लगा देंगे।
0: फिर बहकने लगे है? तो औरतों में यही बुरी आदत है, फौरन ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देंगे।
1: क्यों, इसमें ख्याली पुलाव वाली क्या बात है?
0: अरे भाई हम एक आम आदमी हैं, कोई राजा महाराजा नहीं कि हिरन के सींग और शेर की खाल से अपना घर सजाएंगे। और पहली बात तो जान ये है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और दूसरी ये कि आजकल का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। अरे वाइल्ड लाइफ वाले पीछे पड़ जाएंगे हमारे, समझे?
1: तो क्या अब हिरन के सींग नहीं लगेंगे?
0: हाँ हिरन के सींग नहीं लगेंगे, लेकिन उसकी आंखें जरूर हमारे मकान में।
1: हिरन की आंखें?
0: हाँ हिरन की आंखें।
1: हिरन की आंखों का क्या करोगे?
0: उसमें मैं सारी दुनिया को देखूंगा, क्योंकि सारी दुनिया उन आंखों में सिमट कर आ जाएगी।
1: पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: अरे मेरी जान, ये जो तुम्हारी

0: झील से भी गहरी आंखें हैं ना, ये हिरन जैसे ही तो है।
1: तो आप वहां थे?
0: जी हाँ, और कोई जगह भी तो नहीं रहने की।
1: छोड़ो ना जनाब, अगर थोड़ी देर और मुझे अपनी बाहों में लिए रहे ना तो कयामत आ जाएगी यहाँ। बोलो ना, हम कहाँ थे? फिर वही।
0: नहीं नहीं, मेरा मतलब है दरवाजे और खिड़कियों से लताएं लिपटी होंगी, यही ना है? ऐसा करेंगे जान, खिड़कियों में पुराने स्टाइल के शीशे लगे होंगे और मकान की सफेद दीवारों पर छप्पर की छत होगी।
1: हाँ, और अबाबीले हमारी छतों में अपने घोंसले बनाएंगी और सारस भी गर्मियों में छत के ऊपर की पयाल में रहा करेंगे।
0: सारस? लेकिन सारस यहाँ कैसे रहेंगे? ना यहाँ तो ना मैदान है ना दलदले।
1: कुछ भी हो, सारस यहाँ जरूर होने चाहिए। मैं उन्हें हर रोज शाम के वक्त उड़ते हुए अपने घोंसले में आते देखना चाहती हूँ, और उनके बच्चों की तरफ देख देख कर जब अपनी लंबी लंबी पतली पतली टांगों पर नाचेंगे और अपने पर फड़फड़ाएंगे, और जब यूं मालूम होगा कि वो सहने मुंह के बल अब गिरे कि तब गिरे, मैं खूब हंसना चाहूंगी।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हम एक सारस रख लेंगे, लेकिन उसके बच्चे नहीं। हाँ, उन पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, और उनकी जगह हम एक बड़ा सा तोता पाल लेंगे। हाँ, उसका पिंजरा जो है हमारे खाने के कमरे में होगा, और जब हम नाश्ते के लिए कमरे में जाया करेंगे तो वो तुम्हें कहा करेगा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। खाने के कमरे में दीवारों का रंग हरा होना चाहिए, और अलमारी में तरह तरह के बर्तन और तश्तरी, और कुर्सियां भी हरे रंग की लकड़ी के पुश्तों वाली जिस पर फूल पत्ते बने हों, और एक कोने में हरे रंग की मेज पर ओल्ड मॉडल की चांदी की चायदानी और प्यालियां रखी।
1: हरे रंग की दीवारें
0: जी,
1: हरे रंग की कुर्सियां
0: जी,
1: हरे रंग की मेज। तुम क्या ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हो?
0: हरा रंग तुम्हें पसंद नहीं
1: है? मगर खाने के कमरे में हरे रंग की कोई गुंजाइश नहीं। जरा सोचो, खाते वक्त भी ऐसा लगेगा जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में बैठे हों।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम ही बताओ कौन सा रंग चाहते हो।
1: भूरा।
0: भूरा, तो ओके, खाने के कमरे के लिए भूरा रंग डिसाइडेड।
1: थैंक यू। अच्छा सुनो, ड्राइंग रूम कैसा होगा?
0: ड्राइंग रूम, उसकी तीन खिड़कियां होनी चाहिए जहां से नजर दरख्तों की चोटियों को पार करती हुई समंदर तक जा पहुंचे।
1: लेकिन इस तरह तो सुबह से दोपहर तक कमरा धूप से भरा रहेगा।
0: नहीं जान, खिड़कियों के आगे छज्जे लगे होंगे और उन पर खुशबूदार फूलों से लदी हुई बेलें पड़ी होंगी, इसलिए धूप अंदर नहीं आ सकेगी, बल्कि बल्कि चंद लंबी सुनहरी किरणें फर्श और कमरे के साजो सामान पर आकर पड़ा करेंगी। कमरे के बीचों बीच एक येलोइश लकड़ी की मेज होनी चाहिए जिसके पाए शेर के पंजों की तरह भारी भारी होंगे, और नीचे नीचे नरम नरम कुर्सियां।
1: हाँ, और कोने में एक शानदार ग्रैंड पियानो रखा होगा।
0: पियानो? फिर तुमने फिल्मी अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। पियानो रखकर क्या करेंगे, ना तुम्हें बजाना आता है ना मुझे।
1: फिर भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए।
0: हाँ, मगर पियानो बहुत महंगा आता है, हम पियानो की जगह सितार रख लेंगे।
1: चलो ठीक है, मगर वो मेरी सिलाई की मशीन कहाँ रखी जाएगी?
0: अरे हाँ, सिलाई की मशीन। सिलाई की मशीन जान, यहाँ ये बीच वाली खिड़की के पास जिसके शीशे पर खूबसूरत डिजाइन बने होंगे और अच्छे अच्छे कोटेशंस गहरे नीले हल्के सुर्ख पीले अंगूरी रंग में लिखे जाएंगे। खिड़की में लताएं होंगी और कांच के लंबे लंबे गुलदानों में नरगिस के सफेद सफेद फूल तुम्हें देखकर मुस्कुराए, और शीशे में बड़े से बर्तन में सुनहरी मछलियां तुम्हारे हाथों से रोटी के टुकड़े ले लेकर खाएंगी।
1: हाँ, और कबूतर भी होने चाहिए।
0: हाँ, कबूतर, बर्फ की तरह सफेद और समंदर की तरह नीले कबूतर। जान, जब तुम बरामदे की सीढ़ियों पर गुलाब के पौधों के पास खड़ी होगी ना, तो वो तुम्हारे सर के इर्द गिर्द चक्कर काटे। तुम्हारे सर पर, कभी कांधों पर और कभी हाथों पर।

0: आकर बैठ जाएगी और तुम उनकी तरफ दाने फेंका करोगे और खुश होगी।
1: सुनो, रेस्ट रूम और तुम्हारी स्टडी, उसका क्या करोगे?
0: रेस्ट रूम, रेस्ट रूम का रुख मेरे ख्याल से पूरब की तरफ होना चाहिए। और उसकी खिड़की के बाहर, उसकी खिड़की के बाहर नारियल का एक बहुत बड़ा दरख्त हो जिसके नीचे नरम नरम हरी हरी घास पर बैठ के आराम से कुर्सियां बिछी हो और हम नरम नरम धूप का मजा ले सके।
1: अच्छा सुनो, रेस्ट रूम का फर्नीचर कैसा होगा?
0: भाई ये फैसला तुम खुद ही कर लो क्योंकि ये तुम्हारा कमरा होगा।
1: नहीं, तुम ही बताओ ना।
0: ओके, मैं ही बता देता हूँ। रेस्ट रूम की हर चीज सफेद होगी। सफेद फर्श, सफेद मेज, सफेद कुर्सियां, दीवारों पर भी सफेद वॉलपेपर होंगे जिसमें लाल गुलाब प्रिंट होंगे। खिड़कियों के पर्दे भी फर्नीचर से मिलते जुलते, यानी कि सफेद। कमरे के बीचों बीच हम मेज रखेंगे और उसके ठीक ऊपर हम वो झाड़ लगा देंगे, झाड़ जो हमारे पास मौजूद है। और उस झाड़ के मोती जब सितारों की तरह चमकेंगे तो बस रेस्ट रूम किसी जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होगा।
1: आतिशदान?
0: आतिशदान? उसकी क्या जरूरत?
1: क्यों, जाड़े के मौसम में हम क्या करेंगे बाबा? सर्दी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी।
0: अरे उसकी तुम फिक्र मत करो जान, जहाँ मैं रहूंगा और तुम, वहाँ जाड़े का क्या काम?
1: छोड़ो भी बाबा, मैंने तुम जैसा दीवाना नहीं देखा। अपनी बीवी से भी ऐसे बातें करते हो जैसे मैं कोई तुम्हारी नई नई गर्लफ्रेंड हूँ।
0: जान, दरअसल मजनू, रोमियो, राजा फरहाद मेरे पूर्वजों में से थे। इसलिए उनका कुछ तो असर मुझ पर होना ही चाहिए।
1: तो फिर उनकी तरह तुम भी दुनिया वालों से दूर जंगलों में क्यों नहीं जा बसते?
0: तो क्या, आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है जान। पहले राजा बांसुरी बजाता था, आज के आशिक गिटार बजाते हैं। फरहाद ने पहाड़ खोदकर दूध की नहर निकाली थी, आज के आशिक डेयरी फार्म खोलकर बैठ जाते हैं। मजनू साहब सेहरा में भटकते थे, आज के आशिक किसी बार में बैठकर मुकेश के गाने या गुलाम अली की गजलें सुनते हैं।
1: बस अब तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता।
0: अरे गर्लफ्रेंड समझता हूँ ना, इसलिए अगर कहीं पत्नी समझता तो मेरी बोलती बंद रहती।
1: अरे देखो सूरज अब डूबने लगा है। अब बस तुम्हारी स्टडी रह गई और हमारा बेडरूम, जल्दी जल्दी उनका भी फैसला कर दो ना।
0: ओ यस यस, स्टडी स्टडी मकान के पश्चिमी कोने में होगी। देखो वहां जहां से मैं दूर तक क्षितिज में फैली शाम की लालिमा देखा करूंगा। इसमें एक बहुत बड़ी सी खिड़की होगी गोथिक स्टाइल की, उस पर एक भारी पर्दा लटक रहा होगा। कमरे में बड़े बड़े राइटर्स, पोएट्स और फिलोसफर्स की तस्वीरें होंगी यहाँ वहां।
1: आगे भी तो कुछ बोलो।
0: हाँ, इन चीजों के अलावा उस कमरे में एक चोर दरवाजा भी होना चाहिए।
1: क्यों क्यों?
0: जब चाहो एक बटन दबाओ और किताबों की अलमारी आगे से हट जाए।
1: ओह, मगर ये दरवाजा खुलेगा किस तरफ?
0: नीचे एक सुरंग की तरफ।
1: सुरंग? देखो अब तुम फिल्मी हो रहे हो।
0: रुको मत, यही सुरंग हमारे कमरे को जाएगी जहां तुम लेटी हुई होगी।
1: अच्छा?
0: हाँ, तुम लेटी हुई इंतजार कर रही होगी मेरा, और सिर्फ एक छोटा सा लैंप तुम्हारे सिरहाने की तरफ संगमरमर की मेज पर जल रहा होगा और तुम बाहर अंधेरे में टकटकी बातें देख रही होगी।
1: रुक क्यों गए, बोलो ना।
0: तुम मेरे पांव की आहट पर कान धरे अपने बड़े बड़े ख्वाबीदा आंखों से बाहर की तरफ देख रही होगी, फिर तुम चोर दरवाजे के खुलने की आवाज सुनोगी और मुस्कुराते हुए अपनी कोहनी का सहारा लिए जरा उठकर उस खटके पर कान लगाओगी।
1: फिर
0: तुम्हें मेरे दबे पांव चल

की आवाज करीब और करीब और करीब आती हुई सुनाई देगी और तुम जल्दी से झूठ मूठ अपनी आंखें बंद कर लोगी। फिर आहिस्ता से दरवाजा खुलेगा, तुम्हारे चेहरे पर कोई अपना चेहरा झुका देगा और एक हल्की सी चीख सुनाई देगी, हल्की मीठी सी चीख, और तुम अपनी बाहें मेरे गले में डाल दोगे और मुझे अपनी तरफ खींच कर भेज दोगे।

0: लगता है, लगता है बारिश होगी। अंधेरा भी फैल गया है, अगर और रुके तो बारिश में फंस जाएंगे।
1: हाँ, मेरे ख्याल में अब घर चलना चाहिए। हाँ। तुम्हारी मम्मी चाय लिए हमारा इंतजार कर रही होगी, आओ चले।
0: सुनो, मेरा तो जी चाह रहा है हम किसी होटल में खाना खाते हुए चलते हैं।
1: खाना? जान, तुम तो जानती हो कि हमारे पास।
0: सॉरी डियर, मैंने तो यूं ही बिना सोचे समझे कह दिया था।
1: कोई बात नहीं जान, अगर हम यहां से बस पकड़ेंगे तो हम दोनों का किराया 6 रुपए लग जाएगा।
0: 6 रुपए? हमारे पास तो सिर्फ 4 ही रुपए हैं।
1: कोई बात नहीं, अगले स्टॉप से किराया 2 रुपए लगता है, हम वहां तक पैदल चलते हैं।
0: इस तरह बारिश में भीगने का मजा भी आएगा।
1: हाँ, और बारिश में भीगने का तो मजा ही कुछ और होता है।
0: क्या? चलो।

रेत समंदर, अभी आप ये प्लेस सुन रहे थे। इसे तहरीर किया था जनाब जमन हबीब ने। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलो हर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फिल्म म्यूजिक।

रेखा भारद्वाज की आवाज में प्याम सईद कादरी का लिखा हुआ ये नगमा आपने सुना। मौसिकी प्रीतम ने तरतीब दी थी। फिल्म बर्फी से था ये नगमा। अगला नगमा फिल्म ये जवानी है दीवानी। रेखा भारद्वाज और तोची राणा ने इसको अपनी आवाज दी है और इसके बोल लिखे हैं अमित भट्टाचार्य ने।

फिल्म जब तक है जहाँ, हर्षदीप कौर की आवाज़, बोल गुलजार के और ए आर रहमान की मौसिकी से सजा हुआ ये नगमा भी आपने सुना। अगला नगमा फिल्म मैरी कॉम से है, आवाज़ विशाल ददलानी की है, बोल संदीप नाथ के और मौसिकी शिवम की।

ध्वनि भानुशाली की आवाज, नोटबुक फिल्म और मौसिकी विशाल मिश्रा की। इस खूबसूरत सी नगमे को भी आपने सुना। अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म केदारनाथ से। आवाज अरिजीत सिंह की है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की, और मौसिकी से सजाया है इसे अमित त्रिवेदी ने।

0: इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का प्रोग्राम खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। वक्त है खबरों का।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क्यादत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अस्वद के खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज खातिर रखें। और अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है, वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर यह कहते हुए मुल्क के जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया है कि खा ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो, ये दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल एक खसूसी शौर्य विजय यात्रा का अहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है एक सफर, एक मुल्क, एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफर सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तذکرہ किया। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। उन्होंने काबिले कद्र हुनरमंदी, जज्बे और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने पर नौजवान इख्तिराकारों की सताइश की। कैच द रेन के बारे मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है। मन की बात के अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हर भारतीय

0: साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी के हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बारिश से वाबस्ता अलग अलग वाकयात में दो बच्चों समेत कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। पाकिस्तान के एक रोजनामे के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकानात को नुकसान पहुंचा है और बड़ी तादाद में मवेशी भी हलाक हुए हैं। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अल-अक़वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क्यादत की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का वक्त खत्म होता है। रात 9:15 पर हम अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: सामिन, अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। मीडियम व्यू 1584 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामिन, अब से लेकर रात के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम व्यू 1584 किलोहर्ट्ज़, मीडियम व्यू 684 किलोहर्ट्ज़, FM सावा शरिया 1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम व्यू थोचिगना गबगैना यूशुबी नजबी किलो हर्ट्ज, मीडियम व्यू टुगैना यूशुबी नजबी किलो हर्ट्ज, FM 11.1 MHz या मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR का घचस आकाशवाणी करगिल का नजर न्योत दिलिंगी जगपो आदित जुलाई जे यूशुर सप्टुक दिरिंग फ्रोचिपोत पी प्रोग्राम खुरे घचायांती दून लेपसेत घचिजूना सलाम पो फ्रोदमोचन सोशिक सखबा संसनाल्ला दुआया प्रोग्राम सदाकल्ला गोजुकबेत दी प्रोग्राम में रक्से का न्यन मजर सखमा कुरानी तिलावत ना तर्जुमा मुल्खान पुन शेख मोहम्मद आमिन।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक्सेत Tonmono chodakwe ashipe der sama metaswe ko rahumnyana tetsana rahumi ashipe inna anzalnahu fi laylatil qadr man taxna ngas di shabe qadir pu yana yantam bandani mina khodai peghambar pe kadir sam quran pu nazil baz wama adra kama laylatul qadr lenge chetpan erin chen peghambar ashe seta yu di shabe qadir pu chi chi shindre samji fazilat na manzilat na qadir yodre ليلة القدر خير من ألف شهر شبي قد دجق بن جول زاستون تيغن بس في عمال بو بس تل دي يعني سان تي تيغن بس في عمال بو خدا من دعلم اس كورين اسبا جن بنداني مينا سوابنا عجرنا غلقستون لقشز دي بس يعني ليلة القدر خير من ألف شهر دجق بن عمال بو yani şabe kadiyya çan la zastun çikna dandayin zastun çi lordun çu çeçin ve zastun çi yani kere na khodan dalimiz ata di yani san panu manzila çezde besyo savab çezde besyo amal bakan la piyak roza ibada ziyarat sadaqe qirat bakan la tanazzalul malaikatu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr Deyecek ben o ruhu der ve malayık bu kuda ben de allem celle şahını işiten ona bandani bas ve ibadat bunun gama hesabını kitabetten et ruhu der ve malayık bu malayık ston ki kaku absır besi kudayı izini kaku seyka babsi tamami bas ve bandani lasti noro goni umuratun gama birisine

ने कहा प्रोग्राम फुचुचिंतु गाछे नमोने फ्या आकाशवाणी श्रीनगर कना उडेनो खबरुना तफसीरन फुचिपो अस्मिजु तुसर दुन्ना मिनेट मिशुंगिस तुसर गेते का मन के बाती पुरगी वर्जन पर फुचुचिंतु

0: होता है और भी रिस्क फैक्टर्स इसमें है, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी। कोई पेशेंट अगर किसी चीज़ के लिए, या एक उम्र होता है जैसे कि 45 या 50 इयर्स के बाद एक पोस्ट मेनोपॉजल हम बोलते हैं, इसमें आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसके बाद हार्मोनल थेरेपी कुछ लेते हैं तो उसके भी हार्मोनल थेरेपी के भी रिस्क होता है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के। तो और कुछ हार्मोनल थेरेपी जो बोलते हैं वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो फीमेल्स में ये रिस्क
1: उम्र
0: हो जाते
1: हिसाब
0: हैं।
1: का
0: और
1: दिया था
0: साथ में जो
1: प्रोजेक्शन
0: ब्रेस्ट
1: का।
0: कैंसर है वो मेल में भी रिस्क फैक्टर्स क्या होता है कि इसमें एक तो एज मैटर करता है ना, एज जैसे फीमेल्स में 50+ में ज्यादा कॉमन होता है, एक एज फैक्टर इंक्रीजिंग एज, जैसे आपका एज बढ़ता जाता है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस
1: उम्र
0: उम्र
1: उम्र हिसाब चांस पास है।
0: के हिसाब से एक रिस्क फैक्टर रहता है आपका। और इसमें दूसरा रिस्क फैक्टर होता है जैसे ओबेसिटी हो गया, जैसे कि मतलब वजन ज्यादा हो गया, किसी को वेट ज्यादा है, वेट पे कंट्रोल नहीं है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है कि जिसका ब्रेस्ट फीडिंग कभी किया नहीं हो किसी ने, या जिसका जिसने कभी शादी नहीं किया हो, या कोई बच्चा नहीं हो तो उसमें कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया हो, तो उसमें थोड़ा चांसेस ज्यादा रहता है ब्रेस्ट कैंसर के। हाँ,
1: फिर अभी भी मतंग से इतना मना है
0: ब्रेस्ट
1: सर।
0: फीडिंग कभी नहीं किया हो, तो यही ब्रेस्ट फीडिंग का एक फायदा है कि ये तो कैंसर से बचाता है। तो ये एक दिन रिस्क फैक्टर्स हो गया। चौथा हो गया जैसे कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग, कोई कोई रेगुलर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं है, और डाइट अच्छे से आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो। और तीसरी बात यह है कि इसमें जैसे रेडिएशन एक्सपोजर कहीं हो, किसी को कोई ब्रेस्ट को कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, एक्सरेस हो गया, या कोई दूसरा टाइप का रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो उसमें चांसेस बढ़ता है। तो हाँ, और दूसरा चीज़ होता है और भी रिस्क फैक्टर्स इसमें है, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी। कोई पेशेंट अगर किसी चीज़ के लिए, या एक उम्र होता है जैसे कि 45 या 50 इयर्स के बाद एक पोस्ट मेनोपॉजल हम बोलते हैं, इसमें आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसके बाद हार्मोनल थेरेपी कुछ लेते हैं तो उसके भी हार्मोनल थेरेपी के भी रिस्क होता है कि वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो और कुछ हार्मोनल थेरेपी जो बोलते हैं वो कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो फीमेल्स में ये रिस्क
1: उम्र
0: हो जाते
1: हिसाब
0: हैं।
1: का
0: और
1: दिया था
0: साथ में जो
1: प्रोजेक्शन
0: ब्रेस्ट
1: का।
0: कैंसर है वो मेल में भी, ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उनमें भी यही कुछ रिस्क फैक्टर्स है। हाँ
1: खो आया दिया ना तकनान
0: हाँ
1: थोचा जिन सुबह
0: बिल्कुल,
1: से।
0: ये रिस्क फैक्टर्स भी है। साथ में हम कॉजेस भी इसके बोल सकते हैं, जैसे रेडिएशन हो गया, यूज ऑफ जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, जैसे शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं, तो वो भी उसमें ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस बढ़ा देते हैं,
1: गुस्सा नहीं आता
0: गुस्सा मेल में और फीमेल दोनों में। और एक चीज है रेडिएशन एक्सपोजर का हमने बोला, एक मोस्ट कॉमन चीज होता है जेनेटिक, एक इसमें होता है जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक
1: नहीं
0: फैक्टर मतलब जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री, अगर हो
1: सुचेसों
0: फैमिली में अगर किसी का ऑलरेडी किसी का ब्रेस्ट कैंसर एक दो नफर को हुआ है पहले, किसी जैसे दादी को, नानी को, या किसी फीमेल को, या उसकी कोई पार्टनर को, जो उसे कोई लेडीज है उसकी अगर कोई सिस्टर है उसको अगर कैंसर हुआ है फैमिली में, तो उसमें थोड़ा जेनेटिक हिस्ट्री में क्या रहता है, उसमें भी कुछ 15% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क रहता है। तो एक जेनेटिक फैक्टर होता है क्योंकि एक जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है।
1: यानी कौन से हिस्ट्री अगर
0: हाँ
1: चिकची का योजना
0: ये
1: का
0: चीज,
1: तो
0: हाँ ये चीज
1: कौन
0: इसमें
1: चिकची
0: फैक्टर मैटर करता है। तो ये
1: चीज
0: चीजें रिस्क फैक्टर्स है और इसके कॉजेज ये ब्रेस्ट कैंसर के।
2: दक्षिण साफ़ पायें तेरे दिल्ली से हो रही है ने पिन मीडिया में का जो आकाशवाणी कर गई लेन कसा था प्रोग्राम ये मज़ा फ़ोन फिया प्रोग्राम फॉर चिकन पोइन ताई बाबा नो प्रोग्राम प्रोड्यूसर पोइन गुलजार हुसैन अस्सलाम वालेकुम आकाशवाणी करगिली कना फ्रुनी प्रोग्राम पो फ्रुचिपा ngachangenti dunla lipsiot प्रोग्राम आंगे ने नोट खान नोनो पान नोमो पान रियांग मजा गए दियां तांगार जुक से ना नन में छन में दुख दुख यांग आची जुना सलाम पो फ्रोद मोचन सोंशिक दिरिंग प्रोग्राम पे अंग सख बजिस नल्ला यन तंग सख पे रिदेलुक सिफिया रिगेला जनों दोन चस पुचाम शिक छाचा इन देश को लास पेरेरिक यांग देर के अपना ngati kargili gher sarkari school chiki kana phruni kana program chik phrochuge phrun dirim program pang ngates ngatir gwe fyar yala zanun zachas putsam si khachanin des kolas perari klep chuget ngates ngati zanun ne anuk changdik khyut yot khan zanun don mar gushin chuk donang ates chu thung mar gushin chuk ngatir guer

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
1: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच ग्रीस के

दर्शन सब पेन्टेज आकाशवाणी दिल्ली का ना हिंदी ना अंग्रेजी नो खबर उस ना बेन पिन मीडिया में का दो आकाशवाणी कर गिलिन कसा था इतले गेन मजार बकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल के जानिब से आंखों के इलाज के लिए बकरिया कॉम्प्लेक्स बेमाथा में एक कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। 26 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक सिर्फ मोतियाबंद के मरीज का मुआयना किया जाएगा और ऑपरेशन के लिए मजदूर हों उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। 29 और 30 जुलाई 2026 को चश्मे के नंबर, बच्चों के बिनियाई के मसाइल, आंखों की सुर्खी, खारिज, पानी आने और आंखों के दिगर तमाम बीमारियों का मुआयना किया जाएगा। लिहाजा जिन अफराद को मोतियाबंद की शिकायत है या उन्हें पहले मोतियाबंद के ऑपरेशन का मशवरा दिया जा चुका है वो 26 से 28 जुलाई के दौरान ज़रूर तशरीफ लाइए, जबकि दिगर तमाम मरीज 29 जुलाई से कैंप से इस्तिफादा करें। वाजिया रहे कि 26 से 28 जुलाई तक मोतियाबंद के मरीज के अलावा किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए कैंप के मुकाम या मुतालिका इंतज़ामिया से राबिता करें।

प्रिंसिपल पीएमशिरी स्कूल जवाहर नवोदया विद्यालय खुम्बतंग कारगिल के मौसला इलाके के मुताबिक पांचवी जमात में पढ़ रहे तालिब इल्म जिनकी तारीख पैदाइश 1 मई 2015 से लेकर 31/7/2017 के बीच तक हो उनके लिए छठी जमात में दाखिला लेने के लिए JNV सिलेक्शन टेस्ट 2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वालिदैन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए navodaya.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। मजीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल पीएमशिरी स्कूल JNV खुम्बतंग कारगिल के ऑफिस से राबिता कायम करें।

0: दादू ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: ए बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी तफसील भरनी है।
0: रुक जा बुद्धू।
5: क्या?
6: ऐसे पॉपअप से होशियार रहो, स्कैमर्स जाती तफसीलात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं करवाते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: rangi business un laske tang mifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chigika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: मीडियम का जो आकाशवाणी करी लीन वक्स पर तुसर टुकने मेरे चौगा सोसुक कसाता पुर्गी गजलिंग मजा मुरुम नंगेलना शफी रेली करना

0: nga mar ti tsaxia tabna ya jing changa ti stren wen ri tabna ya changmi ka gar ka ton stren wen chi ka ton tabna du la nga ti shi te anu kuna ya organic in ma pi man ri ka chuga nftwa yan jaz in dis ko layer es mo fasal bas se ma skol la mol nar gal pa bakhsh abdullah
1: sabse pehla na di ring 26 july di ja pe anu nga ti 99 kargil wali di victory phila di courage phila di sacrifice di qurbani phila nga ti particularly army jawans ga ma ni taraf sna yani astahdil se khwa di ring nga tes vijay divas मुबारक से क्योंकि दी विजय दिवस पु गति करगिली यानी जवान दी जंग प्यानो खेस्तांस खाने दी कुर्बानी याद त्यानो गतस हर साल 26 जुलाई मनाई जात तो दीर या अपना सर गति प्रोग्राम स्कूल लयो गतांग तो यरस मोस दीरिंग गति द्यानो यानी दारा गति शायद विजन यो की ऑर्गेनिक फार्मिंग बचा जिन गतांग केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ ना दूर हो चांसेस बेशक सर दक्षा गति लद्दाख सोस खत्यानो यरा थोंग मसोंग दी बचंग पहला गति छासोना दो सोस का तो स्ट्रीम का अलग हॉर्टिकल्चर पर इन क्वींस केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड यूज बस लेकिन चंग कंट्रोल मन थो दू असली कस्तेन दुग न का तो दू यंग एक इफेक्ट चिकिन डिमेरिट चिकिन यानी क्लाइमेट चेंज तो दक्षण ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक इम्पोर्टेंट इशू सोचो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह का सिर्फ ग्लेशियर सख्छा जूचामिन यानी सडन छरपा योचा छुलोक योचा पोदार एग्रीकल्चर चीज शिफ्टिंग मौसम पोखुटेबल छाना दिल चामो नातिर छचिन गातिर मिसके खाने पेस्ट नांग अल्ला खचू लाया टेम्परेट एरिया जम्मू लाया अदर कंट्रीज का तुम लाइत नदे पेस्ट निफिया दरे गति दी इन्वायरमेंट पो क्लाइमेटिक कंडीशन पोखुफिया फेवरेबल सोजिन तो खू दिया सर्वे बच अब खू सर्वे छाना खुं जखानी नेचुरल प्रेडेटर पुमा न मेत मेत पन खुं आबादी बड़ाई छिनसु प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप पु यानी दी बायोलॉजिकल इकोसिस्टम चंग मन खखचे मन इंपॉर्टेंट दी पेस्ट इज कंट्रोल बे यरा मिसाल चिकताना का तो यानी प्रिकली थॉन कैक्टस जरखन चिक यंग कंट्री छने खेरे ऑस्ट्रेलिया तस खने सुख दे कैक्टस से आबादी दी चिक ऑस्ट्रेलिया बड़ाई सोंसु की बिल्कुल जगह मालू सुख दे कैक्टस पु मना बड़े छिन सोंसे देख ना साइंटिस्ट ने खो जेड नो से फांसे माता हूँ खत्म अब सु खो घर न क्यों पिन्ना ग इन्वायरमेंट मैंने पहला क्यों सा सुख पिन्ना दे अस्तास हूँ सु जी कैक्टस पी का गास त्रिन पुसु जात सु ताना दे कैक्टस पु जखा ने मौत जिन चेनी गति परवाना में मत ख्याल लप से दो सौ से लार्वे जात पिन सु अब दे लार्वे क्यों से क्विज ऑस्ट्रेलिया और दे कैक्टस उत से लोमो ने कह दे लार्वे फूत ना सुपा दे कैक्टस से पॉपुलेशन पु कंट्रोल है उसको ज्यादा बढ़ाई दूसरों को नेचुरल प्रेडेटर दिया चोसला गति सासी गोभी या सब्जी पाला का खास कर स्त्रिंदा बेदे स्नल्ला शायद आज से 15 साल 10 साल पहला गता दी स्त्रिंदा बा मिंथोमन छाना गति देरां दे चना डिफरेंट टाइप्स सी बर्ड्स पॉपुलेशन योंचिन या बटरफ्लाइज पॉपुलेशन दू निस एक्चुअली दी स्त्रिन उनजा खाने कोई नेचुरल प्रेडेटर लेकिन दक्षण ची सुन क्लाइमेट चेंज की वजह का ओदे बी पॉपुलेशन पू दे नेचुरल प्रेडेटर स्तोर पेस पुलुस छना पैस प्यानुक दिन ब दिन खुए पॉपुलेशन पों बढ़े सु पॉपुलेशन हिसाब भी खुआ इन्वायरमेंट प्यानुक रेजिस्टेंस हम बढ़े छिन सु दूसरा पेस्ट यानुक मेन कारण चिक पेस्ट कंट्रोल में छकन पुंग अतस पहला था शानुक स्ट्रिन तबने का तो पहली टाइम शिचिन लेकिन धीरे धीरे दसमाने हिसाब पे कद पेस्ट पुस खुरियानुक रेजिस्टेंट डेवलप छिन अब खुयानुक म्यूटेशन जरखनी तब्दीली को चिन दू साइंटिफिकली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म छेनो धीरे धीरे छन कुलिया खो संदे म्यूटेशन पर डेवलप बस अब खोस खुरी जीन प्यांग मॉडिफिकेशन बस दू चोस प्रोटीन चिल्दन दे प्रोटीन पुस दे केमिकल पेगानो को बचाई बस इफेक्ट पेगान अब नतस्मान तब असर मासूम दिया बिल्कुल दिया नोस पु नत इंसान जिस एंटीबायोटिक इसमान से पहला 100 mg या 150 mg जाचिक फिट कुले कुलिया आधा छेन 500 mg ठीक छा मैं छम्पा जगमा खाची लो 1000 mg से ठीक छा पहला टाइम पी के बैक्टीरियल अटैक बचाना गति दें कम डोज के एंटीबायोटिक पुस्को सर नेक्स्ट दे बैक्टीरियो संग एडाप्टेशन बचिन कुले कुलिया दिसमा ने डोज हिसाब पी के खुद कुरियान रेजिस्टेंट आखिरकार दी चिक रेजिस्टेंट जा जिन को एंटीबायोटिक साम शिजा नया शिजा दिया सोसपू हर एक नेचुरल पेस्ट यानी कुले कुले म्यूटेशन से दे केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड सुनी अगेनस्ट खुया रेजिस्टेंट डेवलप दे रेजिस्टेंस पुस बस यानी खोशिचा में तो गता कोशिश बार कोशिश बल्कि दी पेस्ट उन ला मेन कॉज पो तो दी नसीहत पो दी किसान ला गास पर्टिकुलरली किसान बसंग दी साइंटिफिक रिसर्च बखन एग्रीकल्चर से जुड़ाई सोच खन इम्यून साइंटिस्ट होनी जिम्मेदारी इन

0: किंग आती दर सब्जी तब ने का तो एक्चुअल रिसर्च बोस सिर्फ इंसान इस पेपर पब्लिश बा आ रहे हैं पब्लिसिटी में ग्राउंड लेवल एक कच्चा है 10 साल सुन 5 साल सुन सही लाज बोस की दिस ट्रेन ने असली नेचुरल प्रेडेटर पूछी दुख ची बस ऐसी चे दुख या जेनेटिक मॉडिफिकेशन देना चाहिए मत प्लांट प्यान अगर दी प्लांट पुले केमिकल है माशी मशीन का तो दी प्लांट प्यानुक जेनेटिक मॉडिफिकेशन चेची बार बोशे तो मिसाल के तौर पर बीटी कॉटन दें चिक्स ना लोको पाला या मौत स्ट्रेन ताबें दुख पसुक अब बैक्टीरिया थ्यूरोजेनेसिस जरखाने दे जीन पुख्यों से कॉटन ही प्लांट में इंजेक्ट बसुक कॉटन प्लांट प्यानो केमिकल चिल्डन दे केमिकल पो ओदे मौत पुजा ची खुई दी थॉर्ड रीजन पुगाम खोज डिस्ट्रॉय बाचे माने पैस पु जिंदा लूज मलूस दरे यारा तो गति युल्ला नार्कोटिक प्लांट जैसे कि क्रॉस जरूरत गतिस कते का लांगटंग जरूरत गतिस कते का दुन गतु खंडे दुक दुना नेचुरल अल्कोहलाइड फिनोल खुदास दी नंगो सुना केमिकल पु तंजन डिफेंसिव पे पेस्ट करना बाची बा हर्बीवोर से करना बाची बा उदिन लमन अस्त्रन तपचा मेन तबिन दो ये हरिंग ऑनलाइन नंग का तो मे था कोई लोमा अनु एंटीवायरल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल खाची जो उनको नेचुरल प्रेडेटर से बचाते हैं अब नती छा से सुनमो ने अनुगा गाते उदु चोक्स मॉडिफिकेशन जीन संबाना यंग दे पेस्ट केमिकल सूरत यंग आता दे न से प्रेवर गुशा मेन पेस्टिसाइड
1: बख्शीज अब्दुल हादी साहब मना अरदमो मोजु चाना दक्सा गती गा फुन्ने कि ना दक्सा गते सनल्ला यारा जरना गते केमिकल मुकोले न सुजु दक्सा गती तिलंग टांग को से गती अमा बस्त्रिन कुने जरा जरना गती गोबी अगर कतोन यास्त्रिन कतोन तपना कुइस मोतु केरे न थलवा केरे तबे चुदे जुहा दोमिन मा बहुत सारे गती लामे के पि मिसाल दक्सा सुनमा उन मा कतोन न दुन लगती मिकास उन जें चिक न्याची मुला उन रूल या गची गोबी उन रूल जरें चिक उदा जाते शिकायत उन जुदे चाना दुनी वजा
0: दोनों मिलता ना या रोटी का मिखा सुन दर चस्प ना तो इंसानी मित्र अंतविश्वास दियो तो जोशी चंग चचमें बल्कि थलबा तब चाओ या क्वींस लंगटें छु तब चाओ या खंपास टूले क्यों से स्कूले तब चस्प दी पीछे ना साइंटिफिक रीजन है लेकिन मिक्स सुन दर चस्प यानो ना चंग साइंटिफिक उजु हाचिक मैं न्यू मना गाता इंसानी संबंध ची समखन पु गाता थोचिन छान लाइजिक्स पनर यप पले उनखान चिक संबंध ताना गाता पूरा गाती दे ख्याल पु इमेज सूरत अंस्ता ना ताकि स्ट्रेन में तब बिल्कुल बेहतरीन सही स्ट्रेटजी इस्तेमाल को लेन क्योंकि दी आर्टिमिजन पु एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को स्ट्रेन में गंगा सच्चा जिन दी केमिकल वजह का 2015 नो जापानी साइंटिस्ट के गति होटोंग जरबत दोला आर्टिमिजिया एनुवाज जिन जैसे तेज स्मेल उनका चोंचा दर दोबारा ध्यान आदि आर्टिमिजिन पु एक्सट्रैक्ट बसेफिंग्स देखा ना मलेरियल जर्मोयो देफ्रा जो लाभ छचा उद्यूला खोज वैक्सीन चुस और खुद दी बेहतरीन स्माल दान नोबल प्राइज तो दी बेसिक है तो छाना दस उसला गाती रिया बहुत सारे प्लांट्स जो अल्हम्दुलिल्लाह दो ने सही इस्तेमाल बासे का तो चुकना गाता स्त्री ने काफी कंट्रोल छास से अनुक सुनमा ना यंबो खंपा क्यों लंगटेन लोमा तुम स्क्रूले या स्कूले तुम दी छू तुम दो संग कुछ हद तक कंट्रोल छचिन तदु माछानक का तो छासु ने अनुक जैस एक एक बैठे सुनमा ना यंबो लंगटंग या खंपार एक साइट उनका तो दी स्मेल पुस बासे हम बहुत सारे पेस्टेस शिचिन छाना दी चीज सुन दूसरा असकिया माना छास पु तब सर गया अपना असली गाता दिचिक सिलो स्ट्रेन पुन खुई लाइफ साइकिल पुन चियो मत महीना एक दो महीना रे गया देखना शिचिन नेचुरल लिखूं लेकिन खुई दी ठुल पु से नंगोस प्यान लुशिन दूस रेजिस्टेंट कम से कम दे विंटर हार्श क्लाइमेट पु फेस बेदे साल आ दियो स्पिल लया मौसम पु खुई प्या फेवरेबल छाना ओदे ठुलो ने सोमा यंग पेस्ट स्ट्रेन सा खुई लार्वी बिंच तो दे ख्याल आते सौ स्टोन ला प्रोख कोचा सब्जी तब सर बना बल्कि दे सौ सख को सर गया अपने दे साई का सौ वाक्यों से बुलीग मेवे ताना का तो दूस खुई ठूल सख शिचिन दूस अगले साल फिर पेस्टे पॉपुलेशन पु कम चचिन ओ चिक सुधन खोरा ता सोन शिचिन आते समय समानी कमाली आदमीन जाएंगे सर गया अपना कोई माना जब इन्हें हुई लाइफ साइकिल पु योद में लेकिन सौ स्टोन ला कोस कोसर गया अपना ओदे सौ निकंग आते मेवे तंग से थलवा वलवा दू चोक से तापना या सावत अपना का तो दूस नेचुरली काफी हद तक कंट्रोल चाचा खातुन मचा दूसो नेचुरल तरीक मेन नजर तादी साइंटिफिक तरीके का डिस्ट्रिन जखाने पेस्ट साल चो ना दू ना साइंटिफिक रिसर्चर से लाजिन पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पोने लाजिन तो दस दूसरा रीजन देगा ती दरे पक्का हाउस सीमेंटेड रूफ दन मना स्नान ला बीवी दुपे छंस अब दरे गते दे बिछांस गामा बन बसिन खुई नेचुरल हैबिटेट पु दुख सौ बन छाना ऑटोमेटिकली खुई हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बस खुई आबादी

0: Kamsun. Di bi abadi kam chachas bu basa di harmful di pestis noksan dan kanun abadiu badai sonsi. To diun zarurin nga tas de bi vi hlongol da sate di chiz pu har khuda sui ka surta te jak chazin gan ecosystem chan kudrati di nizam pyan sak balance jak pe pya. To nga tas di khuda jak skane di balance pu nga tas disturb basin. तो हमेशा गस किसान उनला से दूसरा क्रॉप रोटेशन तुम क्रॉप या नुक दुसोस नती देर खाने दे लंग टंग चोसुन या खंपा चोसुन या क्रॉस चोस दुसोस प्लान खाची गांग क्यों से सासे बैठो ने कोनो ने कतो तो दी सिमेल पुस बसंग बहुत सारे हार्मफुल पेस्टिस खत्म जाचे से और दिस वाला केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड यूज मिबार गोशिन क्योंकि रन ऑफ वाटर छरपी छु ऑन स्क्रू ले खेचिन छुका लेप चेजिन छुका ले बना का तो छुका युद्ध खाने दे सामशिक यानी जानदार चीज न्याय युद्ध दून इका नुकसान ना मचा जाजिन स्नल लाइन केमिकल ची यूज बात पिन डीडीटी जर खंचिक डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन दो एक पेस्टिसाइड तो रा यूज बात पिन लेकिन दे पेस्टिसाइड पुदु तो शिक खतरनाक चुत सुलो पहला छा से आता माना प्लांट सी रूट उन्हें थेने गेन लाइक मचा लोमोनिया अब दे लोमाओ का तो दे या नाते जोस नातियानु छा से आता खान तो बसों दो गुना बढ़े चाचा दिया चोग ला दी छुनमा तब जो सास पियान यो सास पियान स्क्रू लिखे रे छुका लेप छुका लेप पने न्या सागस जोस अब न्या नुक आबादी तो बसान बढ़े दे न्याओ जाखाने न्याले ने जाना का तो न्याले ने आबादी आनुक दे कंसंट्रेशन पुदु बसान बढ़े छाचा हालांकि दे केमिकल पुस फुली फॉर्मेशन में चुपसु दे बाहर रिशिया ले कैल्शियम है छाना बेचारा दे छिया दुखाने बाढ़ सुनी पॉपुलेशन माना खत्म सुन क्योंकि खुन ठुल पु शेल पु कमजोर छाना ठुल तामाजिक छाक से छाचा लेकिन अंगातस का तो बेक का तो कंजूम मना अंगाती रुगानो दी आबादी यान तीन गुना बड़े छते कंसंट्रेशन पु छाना दुसोस केमिकल सुनी के धारे बेन यो इन ना केमिकल को गाची छिन ना अंगाती रुगान म्यूटेशन अंगाती डीएनए चेंज बे देन सलाहियत दुन बसंग गाची छिक ऑर्गेनिक तरीका अंगात इस्तेमाल ना बारो छिन किसान सोस बेहतरीन साइंटिस्ट ग्राउंड लेवल अलास बखान छि दांदे छो साइंटिस्ट सुनामिन क्योंकि रे एक्सपीरियंस बेसिक दी चीज सुनी के तजुर्बा बारो छिन
1: बख्शीश अब्दुल हादी साहब मना अर्दमो मौजू छना दखसा अंगाती खतिला द गैर हाजिर ना ऑर्गेनिक नाता सेक्टर ना बोर में निश्चित से ना जो छाना गति मेमोस कुनला दखसा को शिकायत पुदी होबत की दखसा गति जस ऑर्गेनिक का तुमदन गतस केमिकल फर्टिलाइजर का तुम माकोल ना अजि सकेत पुगन गचा चा युंगिक यो ममती जकी का गति मेमोस कुनिस गचुक या लजरी बावशिन ताकि दी सकेत कुन ऑर्गेनिक लंचस पुने यंबो यंबो प्रोडक्शन पों को यंग स्केत नो नो दिस कोले चा
0: दरे गतस केमिकल फर्टिलाइजेशन जर यूज बना तीन चीज बात एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम दिस संपू क्योंकि गति हिंदुस्तान ज्यादातर सवाल पे नाइट्रोजन तो नंगता यानी हाइब्रिड यानी क्रॉपिंग बार कुछ हाइब्रिड क्रॉप यानु दक्षण दे गति लगातार नष्ट बिंदुक न का तो लो ये सुम नष्ट क्रोता बिंदुक ना यारस केमिकल फर्टिलाइजर यूज बस हम फायदा है मेरे क्योंकि दी नष्ट पुस्यां युद्ध खाने नाइट्रोजन पुत्थे न खेचीं छाना सही फर्टिलिटी कमजोर चार कुछ अगर का तो यारस दी सक्यत पुला एक कनाल युद्ध ना का तो फेत पुला स्त्रान्मा तो फेट पर नस्तो या मिक्सिंग रिबा सकतो दिस त्रनमोन ला जरबा साइंस एंड लेग्यूमिनस प्लांट दुनी रूट पियानो बैक्टीरिया दुख छ जिन राइजोबियम बैक्टीरिया छ असली दी बैक्टीरिया नमायत खानी एटमॉस्फेयर इन नाइट्रोजन बिकॉज से नंगल तक फिक्स बचिन 100000 खेत बचे तेरे तजुर्बा बल तो लॉजिक का तो स्टनमा दे कना लॉजिक ना स्थापना दे जी पे हमेशा पैदावार पु बढ़ाई छ छ दूसरा मेन मदरें अति इन्वायरमेंट पंगारस माना प्रैक्टिकल इलता सरंगाती आर सूरु साइटो नाम अर्थ वाम जन चिरिंग मोस्ट इन जियो मत दिस टेन पु मान असन ल पीट चो से इंतजाम बार गोस पर दो गोस पिनो अगर का तो गतस साउ लखमोर एक या अति शिलाएं लो दून का तो ठीक बस दे शिलांग इन का तो फिंग सता दे बिल सा तो क्यों से जाशी हल्का खड्डे चो से कब से मन नखपोर दन चो ए मोरफस लुल दन चो तो दे लुत पु क्यों से तो बेहतरीन वर्मी वाम सक अर्थ वाम क्यों से गति से जीवन सासु न तांस जो दोस बचिन असली soil fertility a chemical fertilizer po ultimate denga ti pedawar badai be solution chik men chana jiun za shik sulo be utna ka to jiun za shik silantian char gushin ta ki lut yot nan ka to khato te chus tule mi kher cha base to main punga suggestion tan kisan un la nas tap nan ka to esa shik udi zo pi plant zo sun yani gambi plant zo sun nan yembo to tu nis yeri chemical fertilizer la spudi plant sun bach
1: bakhshi jo chana dakhsa ga ti memos kun la lut ta bat ta ti kuch na kuch adat sun zo chemical
0: रा सपोतां देखना दिया बाले यूरिन एक्सक्रीटा सा दून मन खुए नंगोल ते यानी फूड सगा डाइजेशन

लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना यूटी गोमा रेस्पेक फ्रू निमीना फेसपर गोजदोत फेसपर सुकूली गोजुक बसे फ्रू रेरिन रेरि मीना कोसनी मिशे सुन लेप चुकपी फिला यूटी इंती जहां में इफ्रा लुक सुनिर दिया पुंग हो इंचोस यहां दी गोजुक की तकरीबी वसला लद्दाख रावा रिवील यार्गा से कौंसल करगी गोवा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोना मेंबर पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा जहां नांग शुक से एक ही उत्पेन स्तफ्तवे में नजर हैं दी सुकूल प्यानुक एबाकी सुकूल उन्नसिप से फेसपर सुहूलियात उन्न फेसपर बसे ट्रेन बस खान शेस सब खान उन्नियो तेंजरन अर्गम हृदयोग से फ्योस में लक्सेप्शन ऑपरेशन ची सी एस सी संघ को मलियंख्योसिन गवाय डॉक्टर ने गोमा रेस्पेका पुक्समन इसकी ऑपरेशन पु मलियंख्योस गौस बसे दी गोमा रेस्पेका लक्सेप्शन सो से इंजरन दी जाती खासन ऑपरेशन उन दक्षन संघ को न सुरु में मास उन लफिस्ता छा मार्गोस पर संघ को खोरान थोपचा सो से इंजरे और जर सर दक्षन में नजर न दी ऑपरेशन पु सी एस सी संघ की कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अल्ताफ हुसैन कमर अली आखोन मेमोरियल अस्पताल करगिल सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अहमद अली सर्जिकल न ऑपरेशन थिएटरी टीम पे जोस्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना कुर्बथंग करगिल दिरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पुलक गोजुक बस दी गोजुक की तकरीब वास्ता लद्दाख रवान रेली एरिया सी काउंसिल करगिल गोवा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन दुना मेंबर पार्लियामेंट यूटी लद्दाख हाजी मोहम्मद हनीफा जहां शुक से एक उत्पेन हुकूमत हिंदी लम ट्रांसपोर्ट दुनर ग्राम वजारत खसकुर नजम सर चौस खान दि सेंटर पुर मुल करोड़ इस लाख ने शुभ भी नरगिया तिरने कर्चो से इंजरे ऐसे रे न्या दि सेंटर पुर नोरो बसे सुमा लक्सेप्शन टेक्नोलॉजी सहूलियत उन नंबू मलेंख्यों से इंजरे सांग सांग सोचते के ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ चेमिनर रोक्षा चाहे इंजरे और से रेन देवरन दुजदांग नगरन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरगेला बसे गाड़ी में सुल्तान दुनाला मिस्टर ओनरूस पे मीना ड्राइविंग लाइसेंस पे करना गुजुक छात जरे और जर बसन खो जा दि सेंटर पर बसे ड्राइविंग लाइसेंस आस्ते मीना समन शख्सम छाचा सिन जरे दि ड्राइविंग लाइसेंस पर महस और गोजदो चिकचा मरचो लमिका गाड़ी में सुल बिफिला खखचन खसकुन गंगमास नमे नुगजख पर गोसुक जरे अशुआ बस अमरनाथ यात्री मीना दिनीस खाथों यात्री मिंगा स्तों जी ना जीप गना इशुंगिस ना जी यात्री ने सिर से के जम्मू ना अमरनाथ लाई ओसन गांव जम्मू ना खचुलर गलम पु बेसर के अपना फुते तामासों गांव ला मिका शरद नजर से उचास बस बन सो से खन इन मेन देवन खखरो ने गाड़ी गना इशुम नत्रु गनु यात्री चुरगुई रे सिर पेनु शंटे स्ट्रोन लो से ग्रल सिर नाल जों फुते तास तक्सो मी नजर ना लोखरे अमरनाथ यात्रा और रक्षा बंधन इस गस्तन पुनयम पो अगस जे इशु सब गदला थमा थन चैन कसता खबर इंसान से के नमजे स्कोर लदरिंग करगिल और इमा नमजा और थासलो जान दरिंग निमी छाती थिक पो करगिल और इशुर तरगु एशारिया और गेट डिग्री सेल्सियस दे आना चोसला कुंदे छानी छाती थिक पो चुचुची एशारिया 19 डिग्री सेल्सियस और तक्स नबास लदरिंग निमी छाती थिक पो इशुर तरगु एशारिया त्रुक डिग्री सेल्सियस दे आना चोसला कुंदे छानी छाती थिक पो चुक्षी गेशा रियात्रुक डिग्री सेल्सियस तक्स नबास द्रासला दिनी निमी छाती थिक पो इशुर चका एशारिया चिक डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सानी छाती थिक पो चुक्षी एशारिया और गु डिग्री सेल्सियस तक्स नबास छालेस को दिनी निमी छाती थिक पो इशुर चबगा एशारिया 19 डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सानी छाती थिक पो चुचवी डिग्री सेल्सियस तक्स नबास दिया ना चोसस कर दो दिनी पदम दिनी निमी छाती थिक पो इशुर सबदुन एशारिया चिक डिग्री सेल्सियस दुना गोंदे सानी छाती थिक पो चुचवी एशारिया चिक डिग्री सेल्सियस तक्स नबास दियो निन मिन दर सब कोई पुरगी खबर आइजिन छस दबोस यशु खुदा नस्ता मनी फकरियां।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दिखा?
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए

0: One drive, one nation, one salute.
1: कैच द रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस सिलसिले में रवा माह की 4 तारीख से मुल्क भर में एक मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पुरानी आबगाहों के अहिया पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने वोकल फॉर लोकल का नारा एक बार फिर दोहराते हुए आवाम को इस जानिब संजीदगी से गौर करने की अपील की। उन्होंने कश्मीर में तैयार किए जाने वाले घास की चटाई वगू पर भी तफसील से इजहार करते हुए मकामी दस्तकार गुलाम हसन और उनकी बेटी तंजीला की सराहना करते हुए कहा,
0: कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था।
1: दरियासा श्रीनगर के रहने वाले गुलाम हसन ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रिवायती वगू के अहिया पर उनका नाम लेने पर मसरत का इजहार किया। तंजीला नामी दोशीजा ने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनका नाम लिए जाने पर अपने तासुरात का इजहार इन अल्फाज में किया।
2: मैं मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में हमारा नाम लिया। पहले जो वगू हम इस्तेमाल करते थे, बस ये फकत चटाई के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते थे, शीट्स के नीचे या मतलब ऐसी फ्लोर पे लगाते थे इसको। लेकिन आज इसको हम एज अ डेकोरेशन यूज करते हैं। इससे हमारे क्राफ्ट जो है बहुत, उसको बहुत वसत मिलेगी। जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की। माशाल्लाह अब तो ये रिवाइव हो गया, अब तो मोदी जी ने भी इसका जो उनका प्रोग्राम है मन की बात उसमें इसका नाम लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आगे जाएगा।
1: मुल्क भर में आज 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की कारगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है। विजय दिवस भारत की पाकिस्तान पर फतह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। करगिल ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसलह फौज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, फौजी सरबरा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा मुल्क की आला शख्सियात ने शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मातृ वतन की सालमियत के लिए सख्त कोश हालात में बहादुर फौजियों की जानिब से पेश की जाने वाली कुर्बानियां और हुब्बुल वतनी के जज्बे को हमेशा याद रखा जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने भी करगिल जंग के शहीद फौजियों को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत की सालमियत और वकार के लिए अपनी अजीम जानें निछावर की। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज का मिसाली हौसला आने वाली नस्लों को हमेशा तहरीक बख्शता रहेगा। विजय दिवस के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर मुनक्किद हुई, जहां वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शहीदों को खराज अकीदत अदा किया और एक गुलदायरा उनके नजर किया। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर करते हुए कहा,
3: कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं, यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है, तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं।
1: तकरीब पर एलजी मनोज सिन्हा के अलावा फौजी सर

0: रोजगार के नए मौके पैदा करने की कोशिश कर रही है। आज नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से 18वीं कौमी रोजगार मेले से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत कई मुल्कों के साथ तिजारत और मोबिलिटी के शोबे में समझौते कर रहा है, इससे मुल्क के हुनरमंद नौजवानों के लिए बेशुमार मौके फराहम होंगे। उन्होंने इस मौके पर 60,000 से ज्यादा नौजवानों को तकरीरनामे मिलने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इससे ये अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मालदोवा, शुमाली मैसेडोनिया और रोमानिया का अपना कामयाब सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली वापस पहुंच गईं। दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने तीनों यूरोपीय ममालिक की आला कयादत के साथ मुलाकात करके बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इख्तरा और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को फरोग देने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने तीनों ममालिक के सरबराहान के साथ वफूद सतह के मुजाकरात करके वहां मुकीम भारतीय बरादरी और कारोबारी फोरमस से भी मुलाकात की। वाज़ह रहे कि मालदोवा, शुमाली मैसेडोनिया और रोमानिया का किसी भी भारतीय सदर का यह पहला सरकारी दौरा था। वजारत खारजा ने एक खसूसी एडवाइजरी जारी की है जिसमें बहर अस्वद में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों पर रोजगार के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से जोर देकर कहा गया है कि वो इस किस्म के काम कबूल करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का पूरी एहतियात के साथ जायजा लें। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा को 18 घंटों के बाद ट्रैफिक की नकल हमल के लिए जुजवी तौर बहाल किया गया है, जिसके बाद आज शाम उधमपुर और बानिहाल से दरमादा छोटी गाड़ियों को अपने मकामात की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्रू को बताया कि शहरा को मुसलसल 18 घंटों की कोशिशों के बाद जुजवी तौर बहाल कर दिया गया है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:38 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:36 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दें, खुदा हाफिज।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: समीन आदाब, आज का तबसिरा लेकर मैं हूं तजम्मुल अहमद। हर साल 26 जुलाई को पूरा हिंदुस्तान करगिल विजय दिवस इस अहद की तजदीद के तौर पर मनाता है कि मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और सरहदों के तहफ्फुज पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये दिन सिर्फ एक अस्करी फतह की यादगार नहीं बल्कि उन जांबाज सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने बरपोश चोटियों पर अपनी जानों का नजराना पेश करके दुश्मन के अजायम को खाक में मिला दिया था। सन 1999 की करगिल जंग जनूबी एशिया की अस्करी और सफारती तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल का एहतराम करने के बजाय खुफिया तौर पर अपनी फौज और तरबियत याफ्ता दरअंदाजों को भारतीय हदूद में दाखिल करके करगिल, द्रास, बटालिक और मुश्को सेक्टर की बुलंद चोटियों पर कब्जा जमाने की कोशिश की। इब्तिदा में उन्हें मुजाहिदीन करार देकर हकीकत को छुपाने की कोशिश की गई लेकिन जल्द ही नाकाबिले तरदीद शवाहिद ने वाजे कर दिया कि यह कार्रवाई बराह रास्त पाकिस्तानी फौज की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में अंजाम दी जा रही थी। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ चंद पहाड़ी चोटियों पर कब्जा करना नहीं था बल्कि श्रीनगर, लेह कौमी शाहरा को निशाना बनाकर लद्दाख को बाकी मुल्क से काटना, सियाचिन पर दबाव बढ़ाना और कश्मीर में एक नया स्ट्रेटेजिक बहरान पैदा करना था। तहम ये मंसूबा भारतीय अफवाज की पेशवराना महारत, गैर मामूली जुर्रत और बेमिसाल कुर्बानियों के सामने नाकाम हो गया। ऑपरेशन विजय हिंदुस्तानी अस्करी तारीख का एक शानदार बाब है। तकरीबन 18,000 फुट की बुलंदी, शदीद सर्दी, दुश्वार गुजार चट्टाने और दुश्मन की बर्तरी के बावजूद भारतीय फौज ने हर चोटी को एक एक करके दोबारा हासिल कर लिया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें दुश्मन बुलंदी पर था और भारतीय फौज को खुली डलवानों पर चढ़ते हुए हमला

0: करना पड़ा, जो अस्करी एतबार से इंतहाई मुश्किल और खतरनाक तसव्वुर किया जाता है। इसके बावजूद जवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर दुश्मन के मजबूत मोर्चों को तबाह किया और कौमी परचम दोबारा सरबुलंद किया। करगिल की जंग ने कई ऐसे हीरोज को जन्म दिया जिनकी बहादुरी आज भी कौम को तहरीक देती है। कैप्टन विक्रम बात्रा का वलवला, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की बेमिसाल कयादत, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और बेशुमार दीगर जांबाजों की कुर्बानियां हिंदुस्तानी फौज की रिवायती शुजात की रोशन मिसालें हैं। 527 से जायद भारतीय फौजियों ने मादर वतन के दिफा में अपनी जाने कुर्बान की, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए, मगर किसी ने भी फर्ज की अदायगी से पीछे हटने का सोचा तक नहीं। करगिल जंग का एक अहम पहलू सफारती महाज भी था। पाकिस्तान की जानब से हकीकत छुपाने की हर कोशिश आलमी बरादरी के सामने नाकाम साबित हुई। बैनुल अक्वामी सतह पर यह वाजह हो गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी पाकिस्तान ने की थी। दुनिया के अहम ममालिक ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो अपनी अफवाज वापस बुलाए और बैनुल अक्वामी उसूलों का एहतराम करे। इस तरह पाकिस्तान न सिर्फ अस्करी महाज पर नाकाम हुआ बल्कि सफारती सतह पर भी शदीद तन्हाई का शिकार हुआ। करगिल ने यह हकीकत आशकारा कर दी कि दरअंदाजी और फरेब पर मबनी हिकमत अमली देरपा कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। आज जब पूरा मुल्क करगिल विजय दिवस मनाता है तो इसकी असल रूह सिर्फ माजी को याद करना नहीं बल्कि नई नस्ल को यह पैगाम देना भी है कि आजादी और खुदमुख्तारी की कीमत हमेशा कुर्बानी, नज्म व जब्त और कौमी इतिहाद से अदा की जाती है। करगिल के शहदा ने यह साबित किया कि हिंदुस्तानी फौज हर मौसम, हर महाज और हर चैलेंज में वतन के दिफा के लिए पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है। तबसरा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, शब बखैर।
1: نخسن سخ پر امتیاز آکاش وانی سری نگر کرنا اردیان و خبروں نہ تفصیل نام پن میڈیا ویوز تو چینا غب گیا نہ یشوشوی نجبی کی لوہار سکا دو آکاش وانی کر گی لین وقسپو تسو یا چھندو کا ستا من کی بات ہے پرگی واجن ورجن پن ین مزاد
2: نیرین چن یلمین نمسکار نتی می سیانو دزت ایتوری گان یوت گانی شانس کل تنگ مفیا یان کلندر لستے رکس پمی شات দিরিং জুলাই ছেস নিশুরচা জ্রুগাং দ্যানা চোষিয়াছিকেন দিরিং কারগিল বিজে দেবাসিং ইয়াং মেন্তাসনা দিজাকপুস নাতাং নারচান ছাচুগাত দিজাকপুস নাতির মাকমিনি খুতপে ইতুফিংগাত কারগিলি থুনমোর রিগুন জিকসমোচান তুসনা নামজান দুশমান নিয়ম্বো থামোবে চাতাকপো নাতির মাকমিনিস গাচোস দুম্বা গাং মাথিয়াস ইন্নাং খুঁই খুদ না হাম্বান সক গজ চ্যালেঞ্জ শিক ইন না থিয়াক পিফিয়া চাতক সুং খুঁ এজ রং এর কো না স্ট্রোক পো ভারত ফাইলি স্ট্রং লুক সে ফিয়া স্প্রালে তংস দিরিং কারগিল বিজয় দেব সে তুসপে কা ফাইলি ফিয়া স্ট্রোক স্কোর খান শহীদ মকমি গংমা ছুক প্রচুগ আচুন দিরিং এ ভারত পুস রং ই খ্যথং উল্লা ইতোবা চাসম মেনমা খুঁ এর মাউন সাক সুমার কুতুন সাকা হেপ চুপি খাখুর দিয়ানা সাম্বে নাংজংস দিলুয়া ফেসপা সুরিয়ে বিজয় ইয়াত্রে গুজুকশিক বাসিন মোটর সাইকেলে কাজ জোনে বে দি বেসপে গুজুকসপু জুলাই ছেস চুজবি জাগা গেলসা দেহলি ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল কানা গুজুক সুসিন ইয়ান দি সোপাও দ্রাসলা কারগিল ওয়ার মেমোরিয়াল কালেপচাসিন দি ফ্রিন পুইন ওয়ান রাইট ওয়ান নেশন ওয়ান সেলিউট দি বেসপুস দেও ইতু ফিংচাসিন ফাইলি ফিয়া তংসপির মকমিনি কুরবানিউ রচে চাস খোরং মানে মিন আচুন দিরিং ফাইল ভারতেস রং ইর মকমিন চা মিন মা টেকনিকি খুতুন লং জার তাং নিউ জাকমা খাচিক দুনলা আই এন এস মহেন্দর গিরি ভারতী বেহরিয়ে ফ্রাংলুক স্ট্রেসিং দি থামে নয় ভারত কুরিয়ং লুক নকশাতংসে রচোসিং ইয়াং রক্যাথক না রদুনচুতন গে থিকপু দি হেসানা পোনসাক ইউল কুরিয়ং না থোবা সুসিং দিয়ানাও খোরং স্তঞ্চন ছিনিয়ুৎপি নাতি ভারতি ক্যুতি মুই দিলজাং ডিআরডিউ এ ছোসনা পিনাকা লং রেঞ্জ গাইডেড রকেটে তজুর্বাবং ফেদিং দির গিয়ালপো নাতি সাইন্স দানুন ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার উনি ফ্রালুকসি স্টেইন জামা নিসুম দুল্লা

0: Dasan sapayante yultoni lurik ngene ne pi media me ka du akashwani kargilin waspoto so to gyatna me ngi shinge zaga chendu kasa ta akashwani dehli kana hindi angrezi dono urdu no khabar mein lebe relela dam bazat
1: 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रति

0: प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज दिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक

0: विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: Hum kal parliament

0: के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी टुडे अज्यूम चार्ज एट द एजुकेशन मिनिस्टर। Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
2: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है।
3: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। वी हैव कंटिन्यूअस मीटिंग्स टुडे। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स। इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली।
2: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा।
1: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
0: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: करगिल विजय दिवस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड टुडे। एंटायर नेशन सैल्यूट्स द इंडोमिटेबल करेज एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स ड्यूरिंग द करगिल वॉर ऑफ 1999। The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
0: Aaj Kargil Vijay Diwas hai. ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: The main function of the Kargil Vijay Diwas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
4: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का।
5: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी। फ्रेंड्स, आवर इंटेंशन इज क्लियर। देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान,
4: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया।
1: The defense minister also highlighted the success of Operation Sindoor as a proof that India possesses the capability to respond to Pakistan's every misadventure with a severity far beyond its imagination.

0: personal letters highlighting the courage and sacrifice of the Indian Armed Forces. Foreign portfolio investors have turned net buyers of Indian equities, purchasing shares worth 14,946 crore rupees so far in July. According to the latest depository data, FPIs infused 3,049 crore rupees in the domestic stock market last week. Meanwhile, India's debt market continued to attract strong foreign inflows. So far in July, foreign portfolio investors have invested 9,521 crore rupees in debt securities through the fully accessible route and 27,391 crore rupees through the general route. UNESCO today added the World War II D-Day landing beaches in France, Greece's Mount Olympus, Japan's ancient capitals of Asuka and Fujiwara, and South Sudan's Boma Badingilo migratory landscape to the World Heritage List. The designations were approved during a UNESCO committee meeting in Busan, South Korea, which reviewed global nominations. The newly inscribed sites recognize outstanding cultural and national heritage, including the historic Normandy invasion beaches, Greece's mythical Mount Olympus, Japan's early imperial capitals, and South Sudan's vast wildlife migration landscape. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-power task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in women's 48-kilogram event, and Rishikant Singh bagged silver in men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निपटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वजीर आजम मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है, और ऋषि कांत सिंह चंबन ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इम्तिहानात की इस्लाहात के बारे में टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकेनी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहान का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। यह टास्क फोर्स साबिक IB डायरेक्टर तपन डे का, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीत

0: कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि कल पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात की दियानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल कल के कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमा को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मुसवदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने आज वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्हें कल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस ओहदे पर मुकर्रर किया गया था। वो सारिफीन उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा व नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत की जिम्मेदारियां भी संभालते रहेंगे। उन्होंने वजीर तालीम के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के फौरन बाद मुख्तलिफ स्कीमों और अहम इकदामात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए वजारत की एक मीटिंग की सदारत की। तालीम के वजीर मुमलिकत जैन चौधरी और वजारत के बहुत से सीनियर अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। बाद में जनाब प्रहलाद जोशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। जनाब जोशी ने कहा कि वो वजारत की कारकर्दगी, पॉलिसियों और इकदामात को पूरी तरह समझने के लिए फिलहाल जायजा मीटिंगें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ा और अहम महकमा है और उनकी फौरी तरजीह वजारत तालीम के प्रोग्रामों और नए इकदामात पर अमल दरामद के पहले इसकी कारकर्दगी को पूरी तरह समझना है।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के बहादुर सिपाहियों को याद किया। उन्होंने शहीदों और सिपाहियों को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो इन शहीदों को खिराज अकीदत पेश करे और एक महफूज, बासलाहियत और खुदकफील भारत की तामीर के अज़्म को मजीद मुस्तहकम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, खाह वो दिफाई साजो सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी तावुन। जनाब मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए कहा कि 24 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसे याद करने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।
2: आज करगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। करगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज करगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल सलाहियतों को लगातार मजबूत बना रहा है। उन्होंने हाल ही में आईएनएस महेंद्र गिरी को भारतीय बहरिया के कामकाज में शामिल किए जाने का खास तौर पर जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि पिछले इतवार को विक्रम 1 को कामयाबी के साथ खला में भेजे जाने से हर भारतीय का सख्त फख्र से बुलंद हुआ है। कैच द रैन मुहिम के बारे में वजीर आजम ने कहा कि 4 जुलाई से एक खसूसी मुल्क

0: फिर मुहिम जारी है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: आज मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने कहा कि हर एक भारतीय दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स की हौसला अफजाई कर रहा है। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड्स के बारे में भी कहा कि इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। मन की बात के इस नशरिए में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया।

0: इस नशरिये में जनाब मोदी ने कश्मीर की रवायती वागो चटाई का जिक्र किया जिसे सरकंडों और धान की बालियों से बुना जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो कश्मीर की वागो चटाई को अपने घरों की जीनत बनाएं। जनाब मोदी ने हरेक से कहा कि वो भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार की गई मूर्तियों के बजाय उन मूर्तियों की पूजा करें जिन्हें गणेश उत्सव के दौरान मुल्क की अपनी मिट्टी से बनाया जाता है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी है। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत के कई तहरीक देने वाले पहलू हैं और एक उस्ताद का रोल उनके दिल के सबसे करीब है। जनाब मोदी ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए यौम आजादी के बारे में इजहार ख्याल किया। उन्होंने सभी से जोर देकर कहा कि वो माई गवर्नमेंट पर हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले बेशुमार ख्यालात और तजवीजों से नवाजें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के नौजवानों का एक विकसित भारत की तामीर में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ एक तरक्की याफ्ता भारत की मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं बल्कि वो इसके सबसे बड़े मुस्तफिदीन भी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता गांव एक विकसित भारत की बुनियाद हैं और नौजवानों का इस तस्वुर को हासिल करने में एक अहम रोल है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि सरहदी गांव के बाशिंदों में चैलेंजों के बावजूद वतन परस्ती का एक पुख्ता जज्बा बरकरार रहा है।
1: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और किसी भी मुजाकरे में पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर पर ही तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने इसे भारत का एक अटूट हिस्सा करार दिया जिसे पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। वजीर दिफा लद्दाख के शहर द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीबात से खिताब कर रहे थे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी नफरत आमेज कार्रवाई से उसी अंदाज में निपटा जाएगा जो भारत की दिफाई फौजों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेमिसाल बहादुरी के साथ दहशतगर्दों और उनके पुष्तपनाहों के खिलाफ इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत में सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की किसी भी मनफी कार्रवाई का जवाब उसके तस्वुर से ज्यादा शदीद अंदाज में दे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बायस कल उड़ीसा में शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुतअद्दिद अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर रियासती हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और मयूरभंज व जगत सिंहपुर जिले में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: भारत के महकमे मौसमियात ने खलीज बंगाल में गहरे दबाव के बाईस कल से ओडिशा से बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केवनझार अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवा के तेज दबाव के बाईस मूसलाधार बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने का खदशा जाहिर किया गया है। एहतियात के तौर पर रियासती सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी तालीमी इदारों और आंगनबाड़ी मराकज को बंद करने का हुक्म दिया गया है। हुक्काम ने अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा होने और वसी पैमाने पर पानी भर जाने का इंतबाह दिया है। इसके अलावा समुद्री सरगर्मियों को रोक दिया गया है। तमाम बंदरगाहों पर लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 नस्ब किया गया है और माहीगीरों से अगले अहकाम तक समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے خواتین کے 48

0: 40 किलोग्राम वजन के जुमरे में सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेट लिफ्टर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में एक रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ग्लासगो में आज दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में भारत के ऋषि कांत सिंह चनम्बम ने मर्दों के 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 121 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मर्दों के क्रिकेट में हरारे में भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और आखिरी T20 मैच में 35 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकनी करेंगे। इम्तिहानात में बदउनवानी से निपटने के लिए कल पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वजीर तालीम की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मुल्क ने आज करगिल दिवस के मौके पर अपने फौजियों के बेमिसाल हौसले और जानों की कुर्बानी दिए जाने पर उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो करगिल जंग के शहीदों का एहतराम करें और महफूज बासलाहियत और खुद मुख्तार भारत की तामीर के अज़्म को और पुख्ता करें। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान के साथ उसके ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की वापसी के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is All India Radio.
2: दासन सपेंते आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी अंग्रेजी दोनों उर्दू खबर सुना बेनत पिन मीडियम वेव्स टॉचिंग ना गबगेर ना यशिजवी नजबी किलो आर्ट सिका दो आकाशवाणी करगिलिन वक्स पोत सने तुसर गुनफेत सुसुक कसता बल्ती प्रोग्राम यन मजर गसकत प्रोग्राम फुचिकन पोइन सुहेल अहमद प्रोग्राम प्रोड्यूसर पोइन गुलजार हुसैन।